मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की तिथि 28, तदनुसार 18 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: सामान्यतः शास्त्र पढ़निहार व्यक्तिकें पंडित कहल जाय छे। शास्त्रज्ञक नाव का आगा पंडित लगेबाक परिपाटी से हो अछि, मुदा ई एक गोट विचारणीय प्रश्न अछि जे की शास्त्र ज्ञाता के पंडित कहल जाय।

0: कबीरदास जी तो स्पष्ट शब्द में कहलन या जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी के मतानुसार जे व्यक्ति प्रेमक मर्म बुझ लेलक सह पंडित अछि, मात्र पोथी पढ़ने ने क्यों पंडित नहीं भ सके छे। पंडितक दोसर परिभाषा एहि प्रकारें देल गेल अछि, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडिता। जे व्यक्ति आन स्त्री के माता जका बुझै छे, अनका धन के तुच्छ हे त्याज्य बुझै छे, आ अपने जका आनो जीव जंतु के बुझै छे, सह व्यक्ति पंडित थिक। कबीरदास जी के देल पंडितक परिभाषा का आधार दार्शनिक अछि। प्रेम शब्दक स्पष्टीकरण दार्शनिके मत सँ भ सकै छे, मुदा पंडितक अपर परिभाषा दैनन्दिन जीवन सँ जुड़ल अछि, लोकाचार सँ सम्बद्ध अछि। शील संयम आ संवेदनशीलता सँ युक्त मनुष्य के पंडित कहल गेल अछि। महाभारत में सेहो पंडित आ मूर्खक अंतर स्पष्ट कयल गेल अछि। महाप्राज्ञ विदुर पंडितक लक्षण स्पष्ट करैत कहै छथि, जस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते कामादर्थं वृणीतेज सवै पंडित उच्यते। एहि परिभाषानुसार प्राज्ञ वा पंडित ओ व्यक्ति छथि जे उच्च मना होथि, निंदनीय क्रियाकलाप सँ हटल रहथि, जे श्रद्धावान होथि, क्रोध दर्प आ सम्मानक इच्छा जिनका पथभ्रष्ट नहीं कह सकनि, जिनक सोचब बाजब आ करब एक रंग हो, अर्थात ओ जे सोचथि सह बाजथि आ सह करथि, ई नहि जे मन में किछु अछि बजै किछु छी आ करै किछु तेसरे वस्तु छी। एकरे महात्मा आ दुरात्माक अंतर स्पष्ट करैत एना कहल गेल अछि, मनस्येकं वचस्येकं कर्मस्येकं महात्मना, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कार्यमन्यत् छुरात्मना। एहिठाम महात्मा आ पंडित दुनू शब्द एकार्थक भ जाइ छै। नीतिकार विदुर त अहुसा आगा बढ़ि गेल छथि, ओ कहै छथि पंडितक मनोगत भाव वा विचारक द्योतक हुनक काजे होइ छनि, ओ वाणी द्वारा मनोगत भाव प्रकट करथि वा नहि हुनक काजे देखि कऽ संसार के हुनक भावनाक बोध भ जाइ छनि। पंडित वाग्जाल सँ बचबाक सदैव चेष्टा करै छथि, एकर कारण ई अछि जे वाणी द्वारा मनोगत भावक पूर्ण आ वास्तविक अभिव्यक्ति नहि भ पबै छै, तैं पंडित एहि दोष सँ बाँचबाक सतत प्रयास करै छथि। ओ काज करबा में विश्वास करै छथि, आत्मश्लाघाक लेश मात्रो हुनका में नहि होइ छनि। पंडितक जाहि गुण सभक चर्चा एखन कयल गेल अछि ओकर उनटा मूर्खक लक्षण बुझक चाही।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोपी चंद्र झा।
1: श्रोता लोकन सुप्रभात। आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा शुरू कयल गेल एकटा कृषि ऋण योजना अछि। एकर माध्यम से किसान के कृषि खर्च जेना बीया, उर्वरक और पशुपालन, मत्स्य पालन जेहन संबंध गतिविधि के लेल 5 लाख धरि के सस्ता लोन प्रदान कयल।

0: कहते हैं। एहि योजना के मुख्य विशेषता और लाभ है पहल ऋण सीमा। सरकार द्वारा एहि योजना के अंतर्गत लोनक सीमा बढ़ाकर 5 लाख टका तक कर देल गेल अछि। ब्याज दर एहि पर सामान्य ब्याज दर लगभग 7% वार्षिक होइत अछि। समय पर ऋण चुकाबे वाला किसान के 3% तक के छूट भेटत अछि, जहि कारणे प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% प्रति वर्ष रहि जाइत अछि। बीमा कवर, एहि मे केसीसी धारक किसान के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भेटत अछि। मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के लेल 50,000 टका तक और आन जोखिमक लेल 25,000 टका तक सुविधा। ई एकटा एटीएम क्रेडिट कार्डक जेना काज करैत अछि, जैसे किसान अपन स्वीकृत सीमा के भीतर आसानी से पैसा निकाल सकैत अछि। एकर पात्रता एहि प्रकारे अछि, सबटा किसान व्यक्तिगत या संयुक्त मालिक, काश्तकार किसान, बटाईदार, मौखिक पट्टेदार, पशुपालक, डेयरी किसान और मछुआरा से एहि योजना का लाभ उठा सकैत छथि। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनू तरीका से कऽ सकै छी। ऑनलाइन आवेदन अहाँ जनसमर्थ पोर्टलक माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कऽ सकै छी। ऑफलाइन आवेदन अपन नजदीकी कोनो कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या सहकारी बैंक में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकै छी। एकर लेल आवश्यक दस्तावेज अछि विधिवत भरल आवेदन पत्र, दोसर पासपोर्ट साइज फोटो, तेसर पहचानक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि, पता के प्रमाण, भूमि के स्वामित्वक प्रमाण, खसरा खतौनी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसान के ब्याज दर में 2% तक छूट भेटत अछि। एकर अलावा किसान लोनक भुगतान फसिलक कटाई या ओकरा बेचला के बाद कऽ सकै छी। ई सुविधा एहि योजना के और विशेष बनाबैत अछि। बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लोनक लिमिट 3 लाख टका से बढ़ाकर 5 लाख टका कऽ देत अछि। आब किसान के किसान क्रेडिट कार्ड बनेबाक लेल बैंक के सरकार निर्देश देने अछि कि 2 सप्ताह के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड बना देल जाए। कृषि संबंधी कार्यक लेल किसान के पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराबे के उद्देश्य से ई योजना शुरू कयल गेल अछि। भारत सरकार किसान के 2% के ब्याज सब्सिडी और 3% के शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करैत अछि, जैसे ऋण 4% प्रति वर्ष के अत्यंत रियायती दर पर उपलब्ध भ जाइत अछि। वर्ष 2004 में किसान के निवेश ऋण आवश्यकता जेना कि संबंध और गैर कृषि गतिविधि के लेल एहि योजना का विस्तार कयल गेल छल। 2012 में इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री टी एम भासिन की अध्यक्षता में गठित एक कार्य समूह द्वारा योजना के सरल बनाबे के लेल और इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करे में सुविधा प्रदान करबाक उद्देश्य एहि योजना का समीक्षा कयल गेल छल। ई योजना बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संचालनक लेल व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करैत अछि। क्रियान्वयन करे वाला बैंक के संस्था, स्थान, विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप ओकरा अपनेबाक विवेक हेबाक चाही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य किसान के हुनक खेती और आन जरूरत के लेल लचीली और सरल प्रक्रिया के संग एक बिंदु के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान केनाय अछि। फसल के खेती के लेल अल्पकालिक ऋण आवश्यकता के पूरा करबाक हेतु आ फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पाद विपणन ऋण आ किसान परिवार के उपभोग संबंधी आवश्यकता, कृषि परिसंपत्ति के रखरखाव और कृषि से संबंधित गतिविधि के लिए कार्यसूची आ कृषि और संबंध गतिविधि के लिए निवेश ऋण आवश्यकता। एहि के संगे कृषि चर्चा के समय संपन्न भेल। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय था किसान क्रेडिट कार्ड योजना और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे गोपी चंद्र झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के गुप्ता।

0: स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में आइए इनसे जानते हैं उच्च रक्तचाप लक्षण खतरे और प्रबंधन के विषय में।
1: नमस्कार, आपका सवाल बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को जो लक्षण आता है और उनकी बीपी हाई रहती है, ये ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर के कारण कोई उनके शरीर का अंग का नुकसान हुआ है, जैसे हार्ट डैमेज हुआ है, किडनी डैमेज हुआ है, आँख डैमेज हुआ है या और भी कोई डैमेज हुआ है, तो लक्षण उसमें ज़्यादा होता है। ये इंतज़ार करना कि जब हमको चक्कर आएगा, माथा भारी होगा, उल्टी होगा, छाती में दर्द होगा, दम फूलेगा, ये बातें सही हैं। ये सब लक्षण भी कुछ लोगों को मिलते हैं, लेकिन हम लोगों का अपना है अनुभव कि ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं होता है। जब दांत उखड़वाने गए तो उस समय पता चला कि बीपी हाई है, जब ऑपरेशन के पहले गए तो पता चला बीपी हाई है, जो अपने गर्भवती महिलाएँ हैं वो गर्भाधारण के टाइम में लगा पता कि बीपी हाई है। इसका संदेश यह है कि आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा अगर है, कोई तकलीफ हो चाहे नहीं हो, हर 6 महीने में अपने डॉक्टर से मिलके बीपी अपना दिखलवाएं और ये जानने की अपना कोशिश करें कि बीपी सामान्य है कि सामान्य से ज़्यादा है। तो सारी दुनिया अभी तक 98% लोगों को, 98% लोगों में कारण को नहीं पकड़ पाई है, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, ऐसा ब्लड प्रेशर जिसका कारण नहीं मालूम है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जीवन शैली और मानसिक तनाव और फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स जीन उनका कमजोर, अगर उनके माता पिता या ख़ानदान में बीपी है तो उनके अपने बाल बच्चों को ज़्यादा होता है। जो लोग मोटे हैं उनमें अधिक है, जो लोग मानसिक स्ट्रेस में रहते हैं उनको अपना ज़्यादा है, जो लोग तंबाकू या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनमें ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि इसके कारण नहीं मिलते हैं। जहाँ तक उपचार का बात है, उपचार में हर पेशेंट को अपने जीवन शैली में अब सुधार के बारे में जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अपना वज़न नियंत्रण में रखें, खाने पीने में शाकाहारी खाना खाएं, नमक की मात्रा कम हो और इतना भोजन करें, कम भोजन करें कि आपका वेट नहीं बढ़े। नमक कम खाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जंक फूड नहीं खाएं। जंक फूड उस खाने को कहते हैं जिसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी या ज़्यादा घी तेल का सामान पड़ा हो। जितने होटल के खाने हैं, रेस्टोरेंट के खाने हैं या भोज भात में पार्टी में जो खाने हैं हम लोग खाते हैं, वो सारी की सारी जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। उसका सर्वोत्तम उपाय है कि घर के अंदर जो खाना अपना बनाया है, टटका टटकी खाइए, उसमें सादा खाना खाइए, मिर्च मसाला कम खाइए, मछली मांस का इस्तेमाल कम से कम कीजिए और आपके भोजन में फलों की मात्रा और हरे सलाद की मात्रा, हरी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो और रेगुलर अपना चेकअप अपने डॉक्टर से कराते रहें कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर वो समझते हैं कि ज़्यादा है तो उनके इच्छा के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार दवा का इस्तेमाल आप चाहें तो अपन कर सकते हैं। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको टेंशन या स्ट्रेस से सामना नहीं अपना करना पड़ता हो, बल्कि नहीं झेलना पड़ता हो। उन लोगों में देखा गया प्रायः कि बीपी की समस्या कम है और अगर बीपी होती भी है तो बीपी कंट्रोल करने में आसानी होती है। उसका सिंपल सा उपाय है कि जीवन शैली में आमूल परिवर्तन अपना करें। मतलब अंग्रेजी में कहते हैं कि लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट। अगर किसी स्थिति में अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट हो गए तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर रिएक्ट करने के बाद अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और ऐसे लोग जो आध्यात्मिक मिजाज के हैं, जो भक्ति भाव में हैं, जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, उनमें देखा गया है कि स्ट्रेस बहुत कम है। राम चरितमानस की एक पंक्ति मुझे याद आती है, होई है वही जो राम रचि राखा। जो लोग हर समस्या का उपाय भगवान में ढूंढते हैं कि भगवान की इच्छा है, उनमें देखा गया है कि स्ट्रेस कम है। जो लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं, हर बात का रिवेंज लेने की अपना कोशिश करते हैं, उनमें प्रायः स्ट्रेस है। जिनके जीवन शैली में एक्सरसाइज का, टहलने के लिए कोई स्थान नहीं है, उनको स्ट्रेस अधिक होता है। जो खाने पीने में लापरवाह हैं, जो लोग अपने व्यसन के शिकार हैं, अल्कोहल के, तंबाकू के, खैनी के, बीड़ी के, गुटखा के, उनमें प्रायः स्ट्रेस अधिक होता है। इन सब बातों से बचें।
0: आज आपने जानकारी प्राप्त की उच्च रक्तचाप लक्षण खतरे और नियंत्रण के विषय में।
2: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित

शिव शंभु जटाधारी। ये शिव भजन अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे शर्मा बंधु के स्वर में। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में स्वर अनुराधा पौडवाल का है।
1: नंबर 380 380।

माया, मोह, ईर्ष्या आदि के लक्षण बताते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी। जिस प्रकार लकड़ी में घुन लग ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में संतान, संपत्ति और सम्मान पाने की लालसा पैदा होती है। माया की सेना संपूर्ण जगत में व्याप्त है। माया से मुक्ति राम कृपा के बिना नहीं मिल सकती।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में स्वर अनुराधा पौडवाल का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा सुबह 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 10:00, 12:00, 1:15 पर और अपराह्न 2:30 पर। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे, समय होगा दिन में 10:30 से और हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत संध्या 6:10 पर। दिन के 11:00 समय होगा शास्त्रीय संगीत का, कलाकार होंगे पंडित जसराज। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन के 12:30 पर। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम युवावाणी, सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग। प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 से। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 से। रात 8:15 पर समय होगा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे रात 10:00।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व

0: माने चाहे प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया।

0: प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोता लोकनि का आशीषक नमस्कार,
1: और साथ ही साथ कायम नहीं का भी नमस्कार।
0: और कार्यक्रम में हम सब आई फिर अन्य छी सुविचार।
1: इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, APJ अब्दुल कलाम ने कहा।
0: निश्चित गप छे, अगर अहाँ कोनो काज करबे नहीं करब तो अहाँ ई जे चाहब कि हमरा सब चीज भेट जाए तो वो संभव नहीं है। जा धरि कोनो काज करब नहीं, जा धरि अहाँ कोनो चीज पर लागब नहीं, ता धरि अहाँ को वो चीज नहीं भेट सकते। और बहुत आदमी सोचे छथि, विचारे छथि, मुजा जखन काज करे के मौका अबे छन तो ओहि काल में सोचते विचारत में हुनकर समय समाप्त भ जाए छन। तो ओहन आदमी के वह चीज जे कहलत है निश्चित तौर पर कलाम जी कि वह भेटे छन जे दोसर आदमी ओ काज क के पाबि गेल रहे छथि, ओहिसँ जे बचल खुचल भेल सएह टा अहाँके भेट सकैए। ताहि दुआरे उठू, जागू और सब दिन भोर जे होइत अछि किछु सिखबैत अछि, आगू बढ़ेनाइ सिखबैत अछि, तऽ अहूँ आगू बढ़ू और जीवन में सफल हो। और जे आदमी जीवन में सफल होइ छथि ताहिमे सँ बहुत आदमी इतिहास में सेहो नाम करै छथि। और कार्यक्रम में सेहो आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अछि एकर हम सब चर्चा कऽ ली।
1: आज के दिन 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बर्ड था, जिसमें भारत परमाणु शक्ति संपन्न की कतार में शामिल हुआ। आज ही के दिन 1991 में हेलेन शर्मन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाली पहली ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री बनी। 1933 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने 1995 को विश्व के लोगों के लिए सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया।
0: तो ई एखन हम सब जानकारी प्राप्त करते रही आज के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में आगू बढ़े छी, अपने सबके ई मैथिली गीत सुनबे छी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर है नमस्कार मिथिला में। और नमस्कार मिथिला में आज आपके रेडियो पर हैं आशीष कुमार सिंह और कायम नैयर। समय के साथ हम यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे और हमें समय के साथ चलते रहना चाहिए। अब आकाशवाणी दरभंगा से समय हो चुका है हालचाल का। हालचाल प्रस्तुत करेंगे आशीष कुमार सिंह।
2: धन्यवाद कयाम। आजुक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। वर्ल्ड म्यूजियम डे आई अछि, मिथिला के विरासत के अनमोल खजाना अछि। अहाँक दुनूटा संग्रहालय में देखे ले भेटत अछि। ई सम्पन्नता राजसी ठाटबाट आ वैश्विक कला दृष्टि के सेहो प्रमाण अछि। चंद्रधारी संग्रहालय में 1000 साल पुरान बौद्ध प्रतिमा त लक्ष्मेश्वर में हाथी दाँत के दुर्लभ कलाकृति सब देखल जा सकते अछि। दरभंगा जिला के 10 गांव सोलर लाइट से रोशन हैत। 79,360 लोग ई योजना से लाभान्वित हेतात। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिला भर के 10 पैघ गाम के मॉडल सोलर गाम बनबे के तैयारी शुरू कऽ देल गेल अछि। ई 10 प्रखंड के 10 राजस्व ग्राम के चयन आदर्श सोलर गाम के रूप में कयल जायत। ई योजना के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के बढ़ावा देनाय अछि, स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलेनाय और आम लोग के बिजली खर्च में राहत प्रदान केनाय एकर मुख्य उद्देश्य अछि। एहिमे योजना के धरातल पर उतारे के रणनीति तय कयल गेल अछि और चयनित गाँव सब में सोलर रूपटॉप प्रणाली के स्थापना के लेल विशेष अभियान चलाओल जायत। शिक्षा शास्त्री और बीएड में आवेदन के आई अंतिम तिथि अछि। 500 रुपया विलम्ब शुल्क के संगे 21 मई धरि ऑनलाइन आवेदन कयल जा सकैत अछि। साइबर ठग सब फर्जी RTO चलान के लिंक पठा के 2 लोग से ठगी कऽ लेलखिन। रवि के दिन थाना क्षेत्र के उष्टी गाम के शंभू कुमार खड़गा और सोनपुर के मिथिलेश सिंह एकर शिकार बनलत। पीड़ित सब के अनुसार मोबाइल पर RTO के नाम से चलान के मैसेज आयल छलन और लिंक पर क्लिक करते फोन हैंग भ गेलन और खाता से 5000

रुपया निकल गेलनि। ठगी का पता चलत दुनू व्यक्ति तुरंत बैंक खाता के अपन फ्रीज करौलत। थानाध्यक्ष चंद्रमणि जी के अनुसार आरटीओ विभाग एहन कोनो लिंक नहीं पठबैत अछि, अनजान नंबर से आयल कोनो मैसेज लिंक के नहीं खोली, तो साइबर सुरक्षा के देखे तो बहुत आदमी जे मोबाइल अपन उपयोग करे छी तो ई गप के ध्यान राखी। दरभंगा के जल्दी भेटत 50 इलेक्ट्रिक बस, जून से शुरू कयल जा सकैत अछि परिचालन, ऐसे सुविधा बढ़त। एक शाम शहीदों के नाम ई कार्यक्रम काल्हि खन रवि दिन सुपौल बाजार में भेल। कार्यक्रम के उद्घाटन क्षेत्रीय पदाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, SDO शशांक राज आ SCPO प्रभाकर तिवारी दीप प्रज्वलित कऽ के कयलथि। एहि क्रम में शहीद सबके श्रद्धांजलि दै के लेल बहुत पैघ संख्या में स्थानीय लोक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सब उपस्थित रहत। जिला भर में 102 एम्बुलेंस सेवा ग्रामीण और दूर दराज इलाका के लोग सब के लेल बड़का राहत बन के सामने आयल अछि। खास कर आपात स्थिति में मरीज सबके त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करबे के लेल ई सेवा बहुत मददगार साबित भ रहल अछि। जीवन रक्षक बनल 102 एम्बुलेंस सेवा अप्रैल महीना में दरभंगा जिला में 3852 मरीज के ससमय इलाज ऐसे सुनिश्चित भेल। 20 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आ 52 बेसिक लाइफ सपोर्ट से मरीज के परिजन लाभान्वित भेलथि। 2662 गर्भवती महिला सबके ई एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचौलथि आ जिला में 75 एम्बुलेंस के संचालन भ रहल अछि। अपने सब सुनि रहल छी हालचाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। सुपौल जिला के विभिन्न पंचायत के डाकघर सब के नव निर्मित पंचायत भवन में स्थानांतरित कयल जा रहल अछि। एहि से ग्रामीण क्षेत्र में डाक आ बैंकिंग सेवा के गुणवत्ता में सुधार भ रहल अछि। एखन धरि 36 डाकघर के पंचायत भवन में शिफ्ट क देल गेल अछि। रहिका प्रखंड अंतर्गत शंभुआर पंचायत के पंचायत भवन परिसर के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भवन के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आ गतिविधि के संचालित करबे के लेल रहिका के वीडियो आशुतोष कुमार, विधाता जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष आ सचिव के भवन आवंटित क देलखिन। मधुबनी और जयनगर में नवका डीएसपी के नियुक्ति कयल गेल अछि। सुश्री कामनी कौशल के मधुबनी सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनौल गेलन हैं। ओते सदानंद कुमार के जयनगर में तैनात कयल गेलन हैं। नव प्राथमिक विद्यालय बारबही पोखर सलेमपुर में यूथ आ युको क्लब के गठन कयल गेल। झंझारपुर में 20 मई धरि 33 के बीए तुलापतगंज फीडर में बिजली आपूर्ति बाधित रहत। भोरे 7 से 10 बजे धरि सुरक्षा कारण से शटडाउन रहत। अंधराठाड़ी पावर सब स्टेशन से जुड़ल क्षेत्र में बिजली प्रभावित रहत। बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र के रेल यात्री सब के लेल एकटा नीक खबर अछि। पूर्व मध्य रेलवे दरभंगा के शीशो सकरी झंझारपुर होइत एकटा और अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन शुरू क देने छथि। ई नवका साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस अमृतसर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू कयल गेल अछि। विभूतिपुर के मोहम्मदपुर सकरा पंचायत सरकार भवन में समाजसेवी के दिस से निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर के आयोजन कयल गेल। बिथान में कबीर मठ परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय सदगुरु कबीर पंथ संत सम्मेलन सम्पन्न भेल। सम्मेलन में नेपाल और भारत के कबीरपंथी संत सब भाग लेलत। विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत समस्तीपुर रेल मंडल स्थित समस्तीपुर स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। पिपराही में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। काल्हिखन वट सावित्री वट श्रद्धा और पारंपरिक तरीका से सुहागिन महिला सब मनौलत। महिला सब वट वृक्ष के परिक्रमा क के भगवान विष्णु और माता सावित्री के ध्यान रखत पति के अपन लंबी उम्र के कामना कलत। 17 मई से 15 जून धर मलेमास शुरू भ चुकल आ 15 जून के बाद आप फिर से कोनो मांगलिक कार्य हैत। उच्च विद्यालय सब में पदस्थापित संगीत के शिक्षक आप अपन विद्यालय के अतिरिक्त पोषक क्षेत्र के माध्यमिक और मध्य प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चा सब के सेहो संगीत के व्यवहारिक शिक्षा देते। प्राथमिक आ मध्य विद्यालय में वाद्य यंत्र उपलब्ध रहे के बावजूद संगीत विषय के शिक्षक नहीं रहे के कारण शिक्षा विभाग ये आदेश जारी कने। सहरसा में व्यक्तित्व परिष्कार सत्र के आयोजन भेल। अही में बच्चा सब के भोरे जल्दी उठे आ पढ़ाई के महत्व के बारे में बताओल गेलन। तेज रौद से लोग सब व्याकुल भ रहल छथि, काज सेहो प्रभावित भ रहल अछि। सहरसा में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अब नव रूप में देखाय पड़त। अही के मरम्मती काज शुरू भ गेल अछि। सुपौल में मानसून के लेल नाला सबक सफाई शुरू कऽ देल गेल अछि। सुपौल के लोहिया नगर चौक स्थित वाटर फाउंटेन के सफाई नगर परिषद दिस से कराओल गेल। मधुबनी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के निर्देश पर 11 केंद्र पर स्नातक पांचम सेमेस्टर के सैद्धांतिक परीक्षा आइ से शुरू भ रहल अछि। एहि में लगभग 32,000 विद्यार्थी रहतत। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में क्राफ्ट चौपाल कार्यक्रम हैत। आइ होय वाला ई कार्यक्रम में पद्मश्री बौआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी आ पद्मश्री शिवम पासवान उपस्थित रहत। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हालचाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं को अवगत करा दें, लोकल अपडेट से नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202-7740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज़ कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर है 7763-818-777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो सुबह 8:26 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:33 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7:00 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3:00 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
2: और एखन मौसम का अगर हम सब गप करी तो एखन मौसम लगातार हीट वेव सनक चलि रहल अछि। अहाँके रहनाइ लोक सबके मुश्किल भऽ रहल छन। अधिकतम तापमान 37-40 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच देखल जा रहल अछि। और अभीवला समय में एखन तेज हवा चलै के संभावना व्यक्त कयल गेल अछि और बहुत ठाम 20 मई धरि वर्षा होय के सेहो संभावना अछि। तो एखन हमसब मौसम संबंधी सेहो जानकारी प्राप्त करैत रही।
1: जी हाँ बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को हम समेट कर लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे। गीत संगीत के माध्यम से, मैथिली सुगम संगीत के माध्यम से और कुछ किसी खास विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज भी हमारा कुछ ऐसा ही इरादा है आशीष जी।
2: निश्चित तौर पर
1: आज जैसे हमने पहले भी कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कि क्या कुछ होता है, ये कौन ऐसी चीज़ें हैं, जिस पर हालचाल के माध्यम से भी कहा गया कि दरभंगा में भी बहुत सारे कार्यक्रमों को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय

0: दिवस 2026 एक विभाजित दुनिया को एकजुट करता है। 18 मई 2026 यानी आज का दिन, जो विश्व भर में संग्रहालय के एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाला संग्रहालय है। यह विषय सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीति विभाजनों को पाटने, संवाद, समझौता करने, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की क्षमता को उजागर करता है। श्रोताओं, अगर हम बात करें भारत में, तो भारत का यह पहला और सबसे पुराना संग्रहालय कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1814 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा की गई थी। इसे स्थानीय रूप में जादूघर के नाम से भी जाना जाता है और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे पुराना संग्रहालयों में से एक है।
1: और अगर किसी संग्रहालय के गप करी तो बहुत आदमी के मन में रहै छथि कि संग्रहालय पुरान जे समान अछि जे तकरा रखे के जगह अछि, मुदा ई खाली पुरान चीज के रखे के जगह नहीं अछि। ई हमर अहाँ के याद अछि, हमर अहाँ के पहचान अछि और अभी वाला पीढ़ी के लेल हमर अहाँ के धरोहर अछि। सबटा मिट्टी के बर्तन, सबटा सिक्का या पेंटिंग, सब चीज एकटा खिस्सा के होइत अछि हमर अहाँ के अतीत के, हमर अहाँ के संस्कृति के, हमर अहाँ के संघर्ष के। तो संग्रहालय सीखे के सेहो एकटा नीक स्थान अछि। ओना 2026 के तहत थीम सेहो अछि शिक्षा और शोध के लेल संग्रहालय। निश्चित तौर पर संग्रहालय गेला के बाद अहाँ के अपन अतीत के बारे में पता चलैत अछि, अपन सभ्यता के बारे में पता चलैत अछि, अपन संस्कृति के बारे में पता चलैत अछि। एकर मतलब साफ अछि, संग्रहालय आब खाली देखे के जगह नहीं रह चुकल अछि, संग्रहालय सीखे के और खोज करे के सेहो एकटा प्रयोगशाला बनि चुकल अछि।
0: जी हाँ, इसमें दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं, कवच, आभूषण, जीवाश्म, कंकाल, ममी और मुगल पेंटिंग शामिल है। भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में 15 अगस्त 1949 को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 1949 को स्थापित किया गया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, जो राजा महाराजाओं के ज़माने में कैसा था कल्चर, किस तरह से लोग अपने जीवन को गुजारते थे, इन सब चीज़ों का जो अंश है वो कहीं ना कहीं हर जगह वो संग्रहालय के रूप में देखने को मिलता है। जो लोग उन चीज़ों को देखकर ही अपनी यादों को ताज़ा करते हैं या उन चीज़ों के बारे में समझते हैं कि किसी ज़माने में हमारे दुनिया में रहने वाले लोग किस तरह हुआ करते थे। उनकी बहुत सारी चीज़ें आज भी हर जगह रखी हुई है ओरिजिनल में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनके कॉपी को रख दिया गया है कि हाँ ये चीज़ ऐसा हुआ करता था, इसी टाइप का हुआ करता था।
1: और अपन देश में अगर गप करी तो संग्रहालय के इतिहास हजारों साल पुराने है। नालंदा, तक्षशिला जेहन प्राचीन विश्वविद्यालय में दुनिया का सबसे पहल संग्रहालय, जरा कि म्यूजियम हम सब कहे रहा। आइयो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कोलकाता के इंडियन म्यूजियम हमर अहाँ के विरासत के जीवित रखने अछि। आब सवाल ई उठैत अछि कि हम अहाँ धरोहर के कतेक सम्मान दऽ रहल छियनि। संग्रहालय तखने जिंदा रहि सकैत अछि जखन हम अहाँ ओतय जायब, ओतय देखब, सवाल करब और ओहिसँ सीखब। आइ हमसब ई संकल्प लऽ सकै छी कि साल में कम से कम एकटा संग्रहालय देखै लए जरूर जाएब। बच्चा सबके संगे लऽ कऽ सेहो जेबन, हुनका बतेबन कि कतौ से आयल अछि, एकर महत्व की अछि, क्याकि बिना अतीत के बुझने भविष्य नहि बनाओल जा सकैत अछि।
0: जी बिल्कुल, किसी भी चीज को हम तभी समझ पाते हैं जब सामने से, अगर कोई चीज हमारे सामने नहीं है तो जो चीज रखी हुई होती है या जिसके बारे में आप पुराने जमाने के लोग होते हैं या किस्सा कहानी के दौरान भी लोग अपने बच्चों को, दादा नाना होते हैं अपने बच्चों को बताते हैं कि ऐसा ज़माना हुआ करता था, इस तरह हुआ करता था, इस तरह के लोग थे, तो उसमें बच्चों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह म्यूज़ियम में जाकर पुरानी चीज़ों को देखना भी हमारी यादों को ताज़ा कहना कर सकते हैं कि हमारी जो जानकारियाँ हैं उसको हम ताज़ा कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का होना बिल्कुल ज़रूरी है और कार्यक्रम को हम बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए और बहुत सारी चीज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना।

उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संग्रहालय के बारे में, और किसी भी चीज़ को, किसी भी यादों को हम संजो कर रखते हैं तो उन यादों को हमेशा हम जिंदा रख सकते हैं।

0: सकते हैं। उसी तरह संग्रहालय में जो इतिहास की चीज़ें हैं वो जमा होती है, जिसे हम जब चाहें जा सकते हैं, कहीं भी हर जगह पर वो बना हुआ है, मतलब ज़िला में है, राज्य में है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जिस तरह फैसिलिटी आपको है, जिस तरह की सुविधा है, उस तरह आप उसको जाकर देख सकते हैं, घूम टहल सकते हैं और देश और दुनिया की यादों को आप सामने से देखकर उसे महसूस कर सकते हैं।
1: और अगर गप करिए अपन मिथिला का, दरभंगा का, तब मिथिला का समृद्ध कला संस्कृति ज्ञान आ पांडुलिपि के अनमोल धरोहर दरभंगा के चंद्रधारी म्यूजियम आ महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय आइयो सुरक्षित है। वर्ल्ड म्यूजियम डे के अवसर पर ये दोनों संग्रहालय मिथिला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजसी विरासत के जीवंत प्रतीक बनल है। चंद्रधारी म्यूजियम में बिहार के दोसर सबसे पैघ संग्रहालय मानल जाते है, जखन कि लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा राज्य के ऐतिहासिक भव्यता और कलात्मक वैभव के अद्भुत उदाहरण है। एतौ प्रदर्शित हाथी दाँत के कलाकृति, संगमरमर के पाषाण निर्मित मूर्ति, अस्त्र शस्त्र काष्ठ निर्मित कलाकृति, प्राचीन प्रतिमा और दरभंगा महाराज के राज सिंहासन विशेष आकर्षण के केंद्र है। संग्रहालय में हाथी दाँत से बनल पलंग, हौदा, सोफा सेट, दुर्गा जैन प्रतिमा, दुर्लभ कलाकृति, उत्कृष्ट शिल्पकला के अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते है। ई खाली ऐतिहासिक वस्तु सबके संग्रह ने बल्कि मिथिला के सम्पन्नता, राजसी ठाट बाट और वैश्विक कला दृष्टि के सेहो प्रमाण दैत अछि।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और कार्यक्रम में जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमने पहले भी कहा कि जो आज है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आशीष जी, श्रोताओं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एड्स एक बीमारी है और पहले इसके बारे में होता था कि अगर किसी को हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा इससे दूर रहने की कोशिश करते थे, ये कोशिश करते थे कि एक पता नहीं जानलेवा बीमारी था ही, इलाज थोड़ा बहुत मुश्किल था, इस वजह से लोगों की जानें चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही साइंस और दुनिया तरक्की करता हुआ है, इस पर तरह तरह की के वैक्सीन, तरह तरह की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आ चुका है, जिसकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में हम मनाते हैं, जिसमें एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है, जो 18 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए प्रभावित वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा देना और इस दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों को एवं स्वयं सेवकों का प्रयासों का सम्मान करना होता है। एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीके की तात्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता को फैलाना होता है।
1: निश्चित तौर पर आई हम सब पूरा विश्व मना रहा है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। ई हमरा अहाँ के मोन पाड़ित है एचआईवी के सबसे पक्का इलाज एक वैक्सीन सह भ सकते है। सोचियो जखन 1980 के दशक में जखन एचआईवी सामने आयल छल, ओ एक लोक सब के बीच मौत के तांडव बन के उभरल छल। आई एआरटी दवाई के से लोग सामान्य जीवन त जी रहल छथ, मुदा दवाई के खोज अहाँ के दवाई रोज खाए पड़ रहल छन और वायरस शरीर में नुकैले रहे छन। तै द्वारा वैज्ञानिक सब के फोकस छन वैक्सीन पर, एक एहन वैक्सीन जे एचआईवी के शरीर में घुसा नहीं दिया। मुदा एचआईवी वैक्सीन बनेने आसान नहीं है, ई वायरस हर महीना अपन रूप बदलत है। यह द्वारा 1997 से दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और वॉलंटियर मिलकर रिसर्च कर रहल छथि। भारत में सेहो ICMR और बहुत रास एहन संस्थान है जे एहि पर काज कर रहल है। मुदा कोरोना के बाद एक नवका तकनीक से इहो के दिशा में बहुत काज आगू बढ़ल है। लेकिन ता धरि हमर अहाँ के सबसे पैघ वैक्सीन है और वो है जागरूकता, सही जानकारी, सुरक्षित व्यवहार और समय पर जांच। मन राखू एचआईवी हाथ मिलबे से, संगे खनाए खाए से या गला लगबे से नहीं फैलत है। ते द्वारा डर और गलत जानकारी से सेहो बचबाक चाहिए।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और किसी भी बीमारी को, पहले भी हमने कहा कि किसी भी बीमारी के बारे में समझ लेना ज़रूरी है। समाज में अगर किसी को इस तरह की बीमारियाँ हो जाती है, क्योंकि कोई रोग हो जाना खुद के बस में नहीं होता है, हम उसका इलाज और उपचार कर सकते हैं, उसके से बचने का उपाय सोच सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होना है तो होकर ही रहता है, इसके लिए अगर हो जाता है तो आप समाज में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस व्यक्ति के साथ खड़े रहना, उनका सपोर्ट करना, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी अगर किसी इंसान को कोई जानलेवा

0: बीमारी हो जाता है तो उसके हौसले तभी टूट जाते हैं जब परिवार के लोग, समाज के लोग, आसपास के मिलने जुलने वाले लोग उनका साथ छोड़ देते हैं या उनको फिर उस नज़र से देखने लगते हैं, तो वो व्यक्ति लगभग में जो उसको कुछ साल पहले मरना है वो उसी दिन मर जाता है। तो उनके हौसले के साथ खड़े रहना है, उनको हिम्मत देते रहना है, ताकि किसी भी रोग में हिम्मत का होना, खुद का बीमार जो है उसका, और साथ ही साथ जो कलीग्स हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, वो उनके साथ खड़े होते हैं, उन्हें हौसला देते हैं, तो वो बीमारी जो ख़त्म होना है वो जड़ से ख़त्म हो सकता है। जो बीमारी में इंसान की जाने जा सकती है वो बीमारी बिल्कुल वो ठीक करके वो जंग को वो जीत लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं देश में, बहुत सारे सेलिब्रिटी को, बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जिनको ये सारी कुछ बहुत सारी बीमारियां हुई, लोग उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनको बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हुई लेकिन वो वापसी किए, करने के बाद परिवार के लोगों ने समर्थन किया, देश के लोगों ने समर्थन किया, तो वो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया। तो इसी तरह समाज में अगर एक छोटा सा व्यक्ति भी हो हमसे मिलने जुलने वाला है तो हम कोशिश करें कि हम उनके साथ बिल्कुल खड़े रहें। इस बीमारी के बारे में बात करें तो यह दिवस 18 मई को मनाया ही जाता है। 1997 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भाषण के बाद 1998 में पहली बार ये मनाया गया था। यह दिन उन शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वयंसेवकों के सम्मान में एड्स मुक्त दिवस के लिए याद किया जाता है, उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक प्रभावी टीका ही एड्स के खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है।
1: और सबसे पैघ ज्यादा टीका नहीं अबैत अछि, भेदभाव नहीं करबाक चाहिए। जेना कि अखन कल्याण कही छलथि कि HIV पॉजिटिव लोक के संगे सम्मान से पेश आबी, डर और शर्म के वजह से लोग बहुत बेर जांच नहीं करबै छथि, तऽ ओहिमे घबराओ नहि, अहाँ जांच कराओ, एहिसँ अहाँके जिंदगी आगू बढ़ि सकैत अछि। HIV और वैक्सीन रिसर्च के बारे में सही गप शेयर करी, अफवाह पर कखनो ध्यान नहीं दी, और क्लिनिकल ट्रायल और वॉलंटियर बननाई या डोनेशन देने में मदद निश्चित करबाक चाहिए, जैसे कोनो बीमारी के दिशा में अगर काज भऽ रहल अछि ओ काज जल्दी से सुचारू ढंग से भऽ सके और लोक सब के बीच ओकर वैक्सीन आबि सकन, जैसे कि ओ बीमारी फैले से रोकल जा सकैत अछि।
0: जी बिल्कुल, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक और प्यारा सा गाना।

उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। कार्यक्रम को बिल्कुल हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर आ चुके हैं और बचे हुए समय में हम कोशिश करते हैं कि श्रोताओं के साथ यूं ही थोड़ी देर और जुड़े रहें। अब वक्त हो चुका है समसामयिक घटना पर एक नज़र डाल दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: गुटेनबर्ग केस में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन से बातचीत की। पश्चिम मध्यम रेल ने राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति की गठन की। पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण के में आज नॉर्वे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार ने दो दिन के तेल भंडार संबंधी सोशल मीडिया पर दावे को फर्जी बताया। आईपीएल क्रिकेट में कल खेले गए दो मुकाबले में पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया। पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में मौजूद रहना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गया। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी प्रथम स्थान पर बनाए हुई और पहली क्वालिफाई करने वाली टीम भी बन चुकी है। दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने राजस्थान रॉयल को 5 विकेट से हरा दिया।
1: और राजगीर में मलमास मेला 2026 के मुख्यमंत्री उद्घाटन कलत संत सबके संगे मिलकर ध्वजारोहण कलत और कहलत कि मलमास मेला में सुविधा सबके ख्याल रखल जाए। बालू पत्थर ओवरलोडिंग पर 5 लाख तक का जुर्माना लागत। बिहार में नवका खनिज संशोधन नियमावली 2026 लागू कैल गेल है और CBSE अहाँ के पुनः मूल्यांकन के लिए 100 रुपया में शुल्क रखलत है। शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं के परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से अंक के असर पड़े के चिंता के रविवार दिन खारिज कर दलत और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क के घटा के 100-100 रुपया करे के घोषणा कलत। भारत नीदरलैंड में चीप रक्षा सहित 17 अहाँ के करार भेल और 20 से पटना संगे पूरा बिहार में बारिश और ठंडका का असर सेहो अखन अहाँ का।
0: साथ ही साथ ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप हमें बिल्कुल बताएं और कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। उसका आसान तरीका है प्ले स्टोर में जाएं जहां न्यूज़ ऑन AIR डाउनलोड करें और आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रमों को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम को अपना फेवरेट बना सकते हैं। इस वादे के साथ अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। दीजिए आज्ञा कायम नैयर
1: और हमारा आशीष का
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली।

0: कार्यक्रम सिंगर हार। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी, सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि। फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
3: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
4: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत, उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
5: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
0: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
6: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ

0: द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता

0: तक कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा

0: को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण

0: भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission Initiative. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our

0: 4 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can send your queries via WhatsApp to 9289094044 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakul.
1: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honour on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is a top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission Initiative. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के 2 रोजा दौरे पर कल गोटनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज दोतरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वजीर आजम मोदी का 31वां बैन अलावामी एजाज है। वफ की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक

0: बड़ी पेशकश है। उन्होंने तजारत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, एसएमईज, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है, ताकि दो तरफा इक्तिसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विथ स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदु किया। अब इस शराकतदारी को सेमी कंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अजम का इयादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदु किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
2: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तसादी इस्लाहात के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
3: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अरकान पहली बार वजीर का अहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीरे आला सुबुकदोष वज़ीरे आला पिनराई विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस

0: तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखिला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज्रायाला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्ज़ज़ अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तई मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़ज़फ़रा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट

0: के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर और दो गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमेरिका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5,00,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी पटना समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये समाचार प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल AIR News_Patna पर भी उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: राज्य में बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। इसके तहत बालू पत्थर के अवैध खनन परिवहन

0: और भंडारण पर रोक के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: नियमावली के तहत पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने में जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहने पर जिलाधिकारी को अस्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने का अधिकार दिया गया है। नियमावली के प्रावधान के तहत लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे और ढके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति ट्रैक्टर 5,000 जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25,000 जुर्माना वसूला जाएगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे GPS डिवाइस से छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम से 80 अग्निशमन वाहनों और AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जलाशयों के आसपास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इको टूरिज्म की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। श्री चौधरी ने पर्यटन के विकास के अन्य संभावित क्षेत्रों पर भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। पटना के लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गोवा, महाराष्ट्र और सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तीनों राज्यों के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को प्रत्येक राज्य के विशेषताओं को जानना जरूरी है, इससे हम अपने देश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान शराब पीने के मामलों में 1,28,470 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें पटना जिले में सबसे अधिक 15,675 जबकि शिवहर में सबसे कम 1,078 लोग गिरफ्तार हुए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि शराब बिक्री और सेवन के मामले में 9,41,857 छापेमारी हुई, वहीं 1,07,851 केस दर्ज हुए। बीते वर्ष 47,06,391 लीटर शराब जब्त हुई। श्री सहनी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े 10,428 वाहन जब्त किए गए। प्रदेश में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रावधानों को थाना स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इससे संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो इसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए डाटाबेस को अपडेट रखना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 18 मई, राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में

0: उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.8, कैमूर का 42.6 और शेखपुरा का 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 41.7 तथा गया, पटना, जीरादेई और जहानाबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक की कक्षाओं को दिन के 11 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र इसके दायरे में आएंगे। यह आदेश 21 मई तक लागू रहेगा। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही चौकबनी से देवघर के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत होगी। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चौकबनी कटिहार मेमू सेवा की भी शुरुआत होगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से 34 मीटर के दायरे में ही रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। पहले यह दायरा 500 मीटर निर्धारित था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी सेतु निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।
2: मनिहारी साहबगंज जो पुल बन रहा है वो दोनों राज्यों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसका हम लोग रेगुलर रिव्यू भी करते रहते हैं। पीडी साहबगंज के द्वारा इसमें बताया भी गया है रिव्यू में कि इस साल के अंत तक दिसंबर 2026 तक ये पुल का उनका पूरा करने का प्लान है और उसी हिसाब से कार्य योजना बना करके वो काम कर रहे हैं। इसकी हम लोग समीक्षा साप्ताहिक रूप से पीएमजी की बैठक में करते रहते हैं और उम्मीद है कि ये पुल दिसंबर तक बन जाएगा तो लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क में कमी की है। सीबीएसई ने शुल्क को 700 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं तो उसे शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बकरीद का त्यौहार 28 मई को मनाया जाएगा। पटना स्थित इमारत शरिया और मरकजी मजलिस रुयते हिलाल खान का मुजीबिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बकरीद का चांद नजर नहीं आया, इसके चलते 19 मई को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी भभुआ सासाराम पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आज सुबह आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जनरल बोगी D3 में जलने की गंध महसूस हुई, इसके बाद बोगी के भीतर धुआं पड़ने लगा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव के पास 12 चट्टी विधायक ज्योति देवी के साथ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया, साथ ही उनके सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई भी की गई। विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में 7 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में कनकई नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं सहरसा जिले के नवहट्टा में कोसी नदी में नहाने के दौरान 2 किशोरियों की डूबने से मौत की खबर है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी महुआगाछी में अपराधियों ने एक CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 1,32,00,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राजगीर में 1 माह तक चलने वाले मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मलमास मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दैनिक जागरण लिखता है, अदानी समूह बिहार में अगले 2 से 3 साल में 50,000 से 60,000 करोड़ का निवेश करेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, बेगूसराय में देशव्यापी साइबर ठगी का खुलासा, एक अकेले

0: खाते के खिलाफ 205 शिकायतें। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, रेडीमेड गारमेंट ठप बना पूर्वी चंपारण, कपड़ों की 493 फैक्ट्रियों ने बदली चंपारण की तस्वीर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, देश के 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, पारा 40 डिग्री के पार। आज अखबार लिखता है, सूबे के सभी 534 मॉडल स्कूल 20 मई से चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान,
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल, उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूम

0: ने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी वाला सामान किन्न वाला,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
0: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आ बैठल कहियो थम
1: जरे खिदमत है बैन अक्वामी अजायब घर का दिन। और फिर आप सुनेंगे महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा। इसके शुरका होंगे जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी, प्रेम किरण और निजामत होगी खालिक हुसैन परदेसी की। और बज़्म मौसिकी में आप गज़लों से भी महसूस होंगे। तो आइए सबसे पहले उर्दू पुराम अंजुमन का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत सी गज़ल से। आवाज़ है अशोक खोसला की और कलाम है कतील शिफाई का।

0: सबने दुनिया पाई लेकिन सब है दुनिया होने वाला, और कब है अपना होने वाला, वक्त आने पर सोने वाला।
1: क्या बात।
0: एक दूसरी गजल के चंद अशआर, दरिया को तशनगी के हवाले से सोचिए, दरिया को तशनगी के हवाले से सोचिए, इस दिल को बेरुखी के हवाले से सोचिए, इस दिल को बेरुखी के हवाले से सोचिए, और एक उम्र पर भी उसको न पहचान पाए हम, एक उम्र पर भी उसको न पहचान पाए हम, दुनिया को अजनबी के हवाले से सोचिए, दुनिया को अजनबी के हवाले से सोचिए, और एक एक लम्हा नफ्स की हुरमत बताएगा, एक एक लम्हा नफ्स की हुरमत बताएगा, हर गम को जिंदगी के हवाले से सोचिए, हर गम को जिंदगी के हवाले से सोचिए, और दानिश्वरों के हम भी तो मातूब हैं हमें, दानिश्वरों के हम भी तो मातूब हैं हमें, पिंदारे आगही के हवाले से सोचिए, पिंदारे आगही के हवाले से सोचिए, और दावा फरिश्ता होने का सबको भले ही हो, दावा फरिश्ता होने का सबको भले ही हो, हमको बस आदमी के हवाले से सोचिए, हमको बस आदमी के हवाले से सोचिए, और सब कुछ है इस जहान में फिर भी यहाँ पे आप, सब कुछ है इस जहान में फिर भी यहाँ पे आप, इस घर को बेघरी के हवाले से सोचिए, इस घर को बेघरी के हवाले से सोचिए, और मेरा चिराग शहर खमोशा में जल उठा।
2: क्या बात।
0: मेरा चिराग शहर खमोशा में जल उठा, जख्मों को रोशनी के हवाले से सोचिए, जख्मों को रोशनी के हवाले से सोचिए, और कुछ फूल हमने कर दिए हैं दस्त के सुपुर्द।
2: क्या बात।
0: कुछ फूल हमने कर दिए हैं दस्त के सुपुर्द, खुशबू को बेबसी के हवाले से सोचिए, खुशबू को बेबसी के हवाले से सोचिए, और मक्ता देखें कि माना अता से आपका रिश्ता नहीं मगर, माना अता से आपका रिश्ता नहीं मगर, आप उसको शायरी के हवाले से सोचिए, माना अता से आपका रिश्ता नहीं मगर, आप उसको शायरी के हवाले से सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल और मतला है, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, और जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदा रखे है इस खबर की कशिश।
1: क्या बात।
0: जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदा रखे है इस खबर की कशिश, और अपने मरकज पे रह सके कब हम, अपने मरकज पे रह सके कब हम, हाय अफसोस इधर उधर की कशिश, हाय अफसोस इधर उधर की कशिश। और ये शेर, कैसे भूलें तिलिस्म मस्नुई, कैसे भूलें तिलिस्म मस्नुई, हमने देखी है बेहुनर की कशिश।
1: क्या बात।
0: कैसे भूलें तिलिस्म मस्नुई, हमने देखी है बेहुनर की कशिश। और ये शेर के, शाख दर शाख फूल फल पत्ते, शाख दर शाख फूल फल पत्ते, खूब है खूब ये शजर की कशिश, खूब है खूब ये शजर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश। और ये शेर कि यूं ही दस्ते दुआ दराज रहे, यूं ही दस्ते दुआ दराज रहे, यूं ही दिल में रहे असर की कशिश, यूं ही दिल में रहे असर की कशिश। और ये शेर कि अब कोई गम कहाँ है मंजिल का, अब कोई गम कहाँ है मंजिल का, है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश, है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश, अब कोई गम कहाँ है मंजिल का, है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश। और ये शेर के, जख्म अच्छा ना हो तो बेहतर है, जख्म अच्छा ना हो तो बेहतर है, कह रही है ये चार अगर की कशिश, जख्म अच्छा ना हो तो बेहतर है, कह रही है ये चार अगर की कशिश, कह रही है ये चार अगर की कशिश।

0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह
0: मैं
1: वाह,
0: खुद को संभालूं
1: क्या
0: के
1: बात है,
0: बेताब दिल को,
1: वाह,
0: किसी ने कहा जिंदगी
1: दगी
0: जा
1: जा रही
0: रही है। और ये शेर आखिरी
1: जी,
0: कि
1: वाह
0: मोहब्बत में कैसी सियासत हुई है,
1: वाह, मोहब्बत में कैसी
0: मोहब्बत
1: सियासत
0: के
1: हुई है,
0: मोहब्बत में कैसी सियासत हुई ये, कहीं की थी डोली कहीं जा रही है,
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है, क्या
0: कि
1: बात है,
0: कहीं की थी
1: डोली
0: डोली
1: कहीं
0: कहीं
1: जा
0: जा
1: रही
0: रही
1: है,
0: है, और यहीं पास कोई नदी गा रही है,
1: जी
0: मोहब्बत की ठंडी
1: हवा
0: हवा
1: आ
0: आ रही
1: रही है,
0: है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह,
0: बात,
1: बहुत ही
0: बहुत
1: खूबसूरत
0: खूबसूरत
1: शेर
0: जी।
1: जनाब प्रेम किरण, आपने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत गज़ल पेश की।
0: वाकई
1: वो कहते हैं कि उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से,
0: क्या बात,
1: और वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया जिसे तराशा था हमने भी एक ज़माने से।
0: क्या बात,
1: अब मैं खालिक हुसैन परदेसी चंद एशार गज़ल के पेश कर रहा हूँ
0: नायत।
1: कि मोह

0: अंधेरे। और ये मक्ता पेश है
1: अच्छा
0: कि हजारों गम है अपनी जिंदगी में फिर भी परदेसी,
1: वाह
0: हजारों गम है
1: अपनी
0: अपनी
1: जिंदगी में
0: जिंदगी में फिर भी

0: वाह
1: और एक दूसरी गजल का मतलब भी पेश कर रहा हूं मैं जी, देखेंगे
2: इनायत हो
1: कि हो इजाजत तो कदम अपना बढ़ाऊं मैं भी,
2: वाह
1: हो इजाजत तो कदम अपना

0: और इस गजल का आखिरी शेर मक्ता से पहले
1: जी
0: कि वादे वसल अगर हो तो हसी लम्हों का, वादे वसल अगर हो तो हसी लम्हों का, अपनी आंखों में कोई खा

0: भी।
1: वाह
0: और हजरत, इसी गज़ल के साथ मैं अब इस महफिल सुखन का अख्तिताम करता हूँ। आज के इस महफिल सुखन में जो शोराए कराम हमारे दरमियान मौजूद थे, उनमें थे जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी साहब, दूसरे शायर जनाब प्रेम किरण साहब जो पटना ही से तशरीफ़ लाया, और मैं खाकसार खालिक हुसैन परदेसी जो आज की निज़ामत कर रहे थे, और इसके साथ ही महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा अख्तिताम पज़ीर हुआ।
2: सामिन, आप महजूज हो रहे थे महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा से। अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब, और बद मौसीकी में पेश खिदमत है ये उम्दा सी गज़ल, आवाज़ है हरी हरन की।

डर फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने के लिए संगीत दिया था शिव हरि ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

बाजीगर फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में। जफर गोरखपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म माशूक में। इंडिवर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था श्याम सुंदर ने।

सपने साजन के। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम।

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना राम कुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक, समित कुमार मल्लिक, सूर्यनारायण पोद्दार, काशीनाथ झाकिरन और गौतम मिश्र को। इसी के साथ विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं पंडित जसराज। आइए इनसे सुनते हैं कबीर भजन राग शुद्ध वरारी में।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत में भी आप सुन रहे थे कबीर भजन राग शुद्ध वरारी में पंडित जसराज से। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
0: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
0: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और

0: 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी।
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओ अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
6: आई लाइक प्लेइंग सर।
7: आई लाइक पेंटिंग सर।
2: वेरी गुड, एनीवन एल्स?
8: सर, आई लाइक सिंगिंग।
9: आई लाइक प्लेइंग विद माय पेट्स।
2: ओह, दैट्स ग्रेट। नाउ टेल मी, Do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love to recite it.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear. Looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up. At the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
3: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the

0: ଟଙ୍କା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।
1: ଇନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୁଲସୀ ଗୌଡ଼ା।
2: ଜଙ୍ଗଲୋ କି ଇନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ କହି ଜାନେ ୱାଲି ତୁଲସୀ ଗୌଡ଼ା
3: କୋ ଦେଶ କେ ଚୌଥେ ସବସେ ବଡେ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସେ ନିବାଜା ଗୟା ହୈ।
4: ଯେ ଆକାଶବାଣୀ ହୈ। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
5: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
4: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
6: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था।

0: वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
1: अच्छा,
0: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृवृक्ष या माता पेड़

0: किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
1: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
1: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
1: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे
1: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

0: हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म महादेव का गोरखपुर से। गायक कलाकार हैं अगम अग्रवाल। गीत लिखा है ऐश्वर्य शर्मा और शिवाला ने। संगीत निर्देशन अगम अग्रवाल और चेतन प्रजापति के हैं।

प्रशांत पांडे के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म लापता लेडी से अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीत दिया था राम संपत ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म मां से। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर, संगीत निर्देशन रॉकी शिव के हैं।

जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिसन मंजू का यह गीत। गीतकार थे सब्बीर अहमद, संगीतकार तनिष्क बागची। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वनवाद से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल। गीतकार शायद

जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिशन मंजू का यह गीत। गीतकार थे सब्बीर अहमद, संगीतकार तनिष्क बागची। श्रोताओं ये सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वनवाद से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल। गीतकार शहीद कादरी, संगीत मिथुन ने दिया है।

अभी आप सुने थे राघव, चैतन्य राघव और अर्जुन को फिल्म वेदा में। गीत और संगीत दोनों ही अर्जुन और राघव के थे। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म डंकी से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह। संगीत निर्देशन प्रीतम ने किया है।

अरिजीत सिंह को भी आप सुन रहे थे फिल्म डंकी में। इसी के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाली समस्त श्रोता बहनों को लालती का प्यार भरा नमस्कार। प्यारी बहनों, आज हम उपस्थित हैं आपके लिए आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार लेकर, जिसमें हम सदा की भांति आपसे मीठी मीठी बातें करते हुए फिल्म संगीत का भी भरपूर आनंद लेंगे। तो आइए बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप जानती हैं कि आज विश्व एड्स टीकाकरण अभियान दिवस है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी एड्स वैक्सीन की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान का समर्थन करना और वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा स्वयंसेवकों के प्रयासों का सम्मान करना है। श्रोता बहनों, यद्यपि HIV एड्स के इलाज के लिए एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART जैसी दवाएं उपलब्ध है, लेकिन महामारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका अत्यंत आवश्यक है। श्रोताओं, यह दिन उन शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो एड्स का टीका विकसित करने में लगे हुए हैं। बहनों, यह अभियान आम लोगों, समुदायों और नीति निर्माताओं को अनुसंधान के लिए धन जुटाने और निरंतर सहयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बहनों, आगे हम विस्तार से इस विषय पर बातें करेंगे। आइए अब लेते हैं फिल्म संगीत का आनंद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोता बहनों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार। आइए हम पुनः बातें करते हैं। श्रोता बहनों, विश्व एड्स दिवस और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस में लोग भ्रमित हो जाते हैं। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से वैक्सीन अनुसंधान और जागरूकता पर केंद्रित होता है। जैसा कि आप श्रोताओं को पता होगा, विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो HIV एड्स के प्रति जन जागरूकता, बचाव के तरीकों और इससे पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव को मिटाने पर केंद्रित होता है। बहनों, विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम एड्स रोग के बारे में बात करते हैं और टीकाकरण के अवसर पर, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के अवसर पर हम बातें करते हैं उससे बचाव, टीका और जागरूकता के बारे में। तो आगे पुनः हम बातचीत करेंगे बहनों। आइए अब हम फिर से चलते हैं संगीत की दुनिया में, सुनते हैं ये प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोता बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको हम सुनवा रहे हैं छोटी मुलाकात आधारित वार्ता प्रेरणा कुमारी से।
4: बहनों, हमारे जीवन में संगीत का बहुत महत्व है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे संगीत ना पसंद हो। बहनों, संगीत संसार के कण कण में समाया हुआ है। नदियों के कलकल में, पक्षियों के कलवर में, भवरों के गुनगुन में, बारिश की रिमझिम में, बादलों की गड़गड़ाहट में, हवाओं की सरसराहट में, दादी की लोरी में, हृदय की धड़कन, सांसों के कंपन में, हर एक में संगीत है। बहनों, संगीत सिर्फ ध्वनियों का एक समूह नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है। गीत संगीत सबके जीवन के लिए परम आवश्यक है। गीत संगीत से मनोरंजन होता है, अर्थात मन आनंदित होते हैं, दिल खुश होता है और दिमाग को सुकून मिलता है। ब्लड प्रेशर सामान्य रहते हैं, चिंताएं दूर होती है, आंखों में चमक आती है, चेहरे पर निखार आता है, यहाँ तक कि आत्मविश्वास भी संगीत बढ़ाता है। अब तो गीत संगीत के माध्यम से चिकित्सा भी होने लगा है। अध्ययनों ने यह साबित कर चुका है कि गीत संगीत शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने में बहुत सहायक होते हैं। बहनों, संगीत तो बहुत जरूरी चीज है। हर त्योहार के लिए गाना बना है, बर्थडे हो, नया साल हो या शादी विवाह हो, उसमें उत्साह बढ़ जाता है। हर त्योहार और फंक्शन में संगीत के माध्यम से उत्साह और ज्यादा फैलती है। बहनों, संगीत मानो हर तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बहनों, संगीत तो जीवन का बहुयामी उत्तम साधन है। यह न केवल हमारे मन को छूता है, बल्कि शरीर, भावनाओं और व्यवहार पर भी असर डालता है। यह भाषा से परे संवाद है जो सीधे दिल से दिल तक पहुंचता है, किसी भी महफिल फंक्शन में रौनक डाल देती है। संगीत के बिना तो त्योहार अधूरा सा लगता है। संगीत के बिना बहनों जीवन अधूरा लगता है। सच में बहनों, संगीत जब हम सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अपनी मन की शांति, अपनी चिंताओं को भूलकर संगीत में हम न कहीं खो जाते हैं। संगीत हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अपने सुविधा के अनुसार जब शांत मन से बैठे हो या आपके पास खाली समय हो तो संगीत अवश्य सुने। संगीत से आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, साथ ही आप स्वस्थ महसूस करेंगे। जब इंसान खुश होता है तो उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या बहुत कम होती है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, और खुश रहने के साथ ही हम अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोता बहनों, पुनः हम आते हैं अपनी चर्चा के विषय पर। श्रोताओं, अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके प्रति जागरूक होकर इलाज करवाना चाहिए। समाज और परिवार का दायित्व इस स्थिति में अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इससे निजात पाने के लिए सकारात्मक पहल करना अति आवश्यक है, ना कि एड्स पीड़ित से घृणा करना। श्रोता बहनों, विश्व एड्स टीकाकरण जागरूकता दिवस लोगों को टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि टीके केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्रोताओं, यह टीकाकरण हमें कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय माना जाता है, तो हमें अवश्य टीका लेना चाहिए। तो आइए बहनों, चलते चलते पुनः हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।
0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोता बहनों, हम आशा करते हैं कि ये गीत आपको अच्छा लगा होगा। अब कार्यक्रम में चलते चलते पुनः हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ।

0: प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर था 1296 किलो हर्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

आवाज सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्मी की दुकान आएंगे दिन के 1:15 पर। 2:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

प्रदीप। संध्या 5 बजे हम आपको सुनाएंगे युवा को संबोधित कर।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे गांव घर कार्यक्रम। गांव घर कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

सजीव व्यस्थ कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे शाम 7:52 पर। मैथिली साहित्य कार्यक्रम सिंगर हार हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम का समय होगा रात 10 बजे। सभा की

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारे कैंसर प्रस्तुत होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है।

अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी को भी आप सुन रहे थे फिल्म नीला कलश में। गीतकार राजा मेहदी अली खान, संगीत मदन मोहन ने दिया था। श्रोताओ, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म असली नकली से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और इस गीत को अपने धुनों से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: संदेश पूर्व आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को। फिल्म आंखें से आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत दिया था रवि ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिंदूर से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सैलेंद्र के लिखे गीत को आप सुन रहे थे संदेश पूर्व लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म असली नकली से। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन ने किया था। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान से। गीतकार हैं राजेंद्र किशन और इस गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। इन भागों में अधिकतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा यह प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज _ पटना पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण हो रहा है। रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पटना सासाराम पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि फायर ब्रिगेड और रेल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। श्री चंद्र ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नरकटियागंज दरभंगा मेमू ट्रेन सेवा शुरू होने से चंपारण और मिथिलांचल की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय सभागार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में आभूषण दुकान में लूट कांड का मुख्य आरोपी अंकित कुमार सिंह घायल हो गया। उसे दोनों

पैर में गोली लगी है। पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। रोहतास के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने आज जनजातीय गरिमा उत्सव का उद्घाटन किया। कल से 25 मई तक जिले के 5 प्रखंडों के 19 जनजातीय बहुल गांवों में उत्सव के तहत शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लाभार्थियों की पहचान कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: राजधानी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

सशस्त्र सीमा बल SSB ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 अप्रैल 2026 को जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मई 2026 से शुरू होकर 7 जून 2026 तक चलेगी। आधिकारिक वेबसाइट ssb.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये देने होंगे। महिला SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। चयन प्रक्रिया स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेडिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 1191 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे। यह भर्ती बिलासपुर डिवीजन के लिए है। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग 1 साल के लिए होगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष है। OBC 3 साल की छूट, SC ST 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क आवेदन किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया मेरिट बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। JSSC में 611 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जी हां, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.government.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। फीस 3 जुलाई तक जमा की जाएगी। आयु सीमा जनरल EWS 35 वर्ष के लिए अधिकतम होनी चाहिए। EBS BC पुरुष 37 वर्ष, SC ST 40 वर्ष और दिव्यांग अधिकतम उनमें 10 साल की छूट की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EW के लिए 100 रुपये शुल्क हैं। झारखंड राज्य के SC ST 50 रुपये हैं। चयन प्रक्रिया प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ रोजगार सूचना यही समाप्त होती है।

0: श्रोताओं अभी आप सुने थे रोजगार सूचना। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक

0: बाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: नियम स्थापित ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों

0: की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के 2रे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैले। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
1: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों को। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म आनंद से। गायक कलाकार हैं मन्ना डे, गीतकार योगेश, संगीतकार सलील चौधरी।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का यह गीत। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म नसीब से। आवाजें हैं डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की। गीत रचना आनंद बख्शी ने किया है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मिस्टर इंडिया से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीत जावेद अख्तर ने लिखा है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म साथी में। गीत समीर के थे, संगीत नदीम सरवन ने दिया था। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत को अपने धुनों से संवारा नदीम सरवन ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कलाकार हैं राखी कुमारी, आइए इनसे सुनते हैं नचारी।

लोकगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राखी कुमारी से नचारी। अगली प्रस्तुति राखी कुमारी की है, ये सुनते हैं देवी गीत।

0: राखी कुमारी के स्वर में भी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।
1: नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला।

0: रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई चार फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूद की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर एक गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है, कौन है रे? रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से दो तीन कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
3: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी,
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था।

0: गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
1: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी।

0: पिताजी काका जी सब चले गए, कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
1: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी, और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो हैं वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में वो बहुत सारी जानकारियाँ।
0: हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, वजनदार चीज़ें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब कितनी वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए

0: ऐसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार
1: छूते
0: बार
1: हैं।
0: हाथ
1: हाँ,
0: लगाते
1: वो
0: हैं।
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग सीट
0: रगर
1: लगा
0: रह
1: रखते हैं,
0: रहती है,
1: डोरी लगी
0: हाँ
1: रहेगी
0: डोरी
1: ना।
0: लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
1: अच्छा
0: पुराने
1: नहीं
0: बहुत
1: लगता
0: समय
1: है
0: से संजो कर रखा गया
1: जी।
0: है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: पहुंचाएं, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं। और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स में,
0: कई
1: तो बड़ा अच्छा
0: संग्रहालयों में
1: लगता है
0: शोज भी होते हैं,
1: जी।
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा
1: बिल्कुल,
0: उस
1: करीब
0: वक्त के
1: पहुंच
0: बारे में।
1: जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते
0: बिल्कुल।
1: हैं, है ना। तो
0: और
1: चलिए
0: हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के
0: गीत के।

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा

0: या कढ़ाई गरम करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं। इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं। टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें। और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो उसको लगातार आप चलाते रहें और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है।
0: तो बस
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे सामग्री
1: अभी पता लग जाए। तो भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना या पनीर ले लीजिए, दो बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, एक बड़ा चम्मच मैदा, एक चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, दो कप ताज़ा दही हो, उसमें दो तीन बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है। और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज़्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा। और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपनी बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल
1: शरारतें कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे, तो वो एक आपसी तनाव होता है, झुंझलाहट होती है कि अरे खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय मोबाइल
0: बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नज़दीक और नज़दीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहाँ तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती हैं। इसे हम नज़रअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहाँ डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे।
0: हाँ,
1: लेकिन टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज़ धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोएं तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पर रखिए तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा के मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे ज़रूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का बातें करने का तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफ़ी चीज़ों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे, तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो, तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊँगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज़ खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फ़ायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीज़ें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो

0: प्रोटीन है, इस ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके
1: जी
0: लिए हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीज़ें साथ में ले ले, तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने ज़माने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। और जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा
0: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है, जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे हैं जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ
0: बिल्कुल।
1: जी।
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज़ कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: ठीक है, प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं? आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं? क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज़ होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का ज़माना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे हैं तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फ़ायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेज बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है,
0: प्रोटीन ले सकते हैं,
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है भले वो

0: की वजह से है, लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन कम भी नहीं खाना है। कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा
1: जी जी।
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे, इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। जो हम बोलते हैं कि
1: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीज़ें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी जी, व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल।
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूँ कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो
0: ओ
1: जाएगा।
0: हो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज़। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज़ करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीज़ें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है, प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूँगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज़्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना

0: चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं।
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स हैं जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है। ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में। एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है।

0: बट वो उतनी ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। जो रीज़न है प्रोटीन खाने का वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
1: जैसे ऑरेंज है,
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं। क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप ग्रहण कर रहे
1: हैं। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना
2: है। अब

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका क्या काम होता है?
1: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि स्किन त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो। तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है
1: जी। तो और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है
0: जी।
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: है,
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खा

0: से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है। लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पे रखो। जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
1: इश्क बुलावा हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर।
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियाँ होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये ज़रूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीज़ें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरीज ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज़ के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतने ही खाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ़ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है,
0: जी,
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो
0: अच्छा।
1: कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए। तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो

0: अपना आहार लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में युवाओं के लिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम।

तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के आज के इस अंक को सुनने वाले आप सभी युवा श्रोताओं को आपके इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं युवा दोस्तों? बिल्कुल अच्छे हैं ना? इन दिनों मौसम लगातार बदलता जा रहा है, कभी अचानक बरसात, कभी धूल भरी आंधी, तो कभी ये तेज गर्मी जो तन बदन को जला दे। मौसम का ये अपना रंग है, लेकिन मौसम कैसा भी हो, हमें अपने लक्ष्य जो हमने जिंदगी में निर्धारित किए ना, उसके लिए तो आगे बढ़ते ही रहना होगा। हर दिन की तरह माटी की सौंधी खुशबू लिए प्यारे प्यारे लोकगीत हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए। साथ ही साथ युवा दोस्तों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हमारी आपकी बातचीत होती है एक ऐसे विषय पर जो कहीं ना कहीं हमारी

जिंदगी को बेहतर करते हैं बातें जिनसे जिंदगी सवरती है, बातें जिनसे हमारी जिंदगी बेहतर होती है। तो आज हमारी आपकी बातचीत का जो विषय है ना, चर्चा का विषय, वो है संस्कृति संरक्षण में युवाओं की भूमिका। आप युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है हमारे देश के संस्कृति के संरक्षण में। युवा दोस्तों, इस कार्यक्रम में कई बार आपने ये मुझे कहते हुए जरूर सुना होगा, किन दिनों आपने ये देखा ना, आंधी तूफान। तो आंधी तूफान में वैसे पेड़ जो अपनी जड़ों को मिट्टी से मजबूती से पकड़े रहते हैं ना, जिनकी जड़ें गहराई तक मिट्टी को पकड़े रहती हैं ना, वैसे बड़े बड़े पेड़ चाहे वो कितने साल भी पुराने हो, वे आंधियों में भी कायम रहते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह कायम रहते हैं जैसे बरसों से उस पेड़ को हम देखते आते रहे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं वो उन आंधियों में गिर जाया करते हैं। उसकी वजह यह होती है कि जिन पेड़ों की जड़ें मजबूती से अपनी मिट्टी को नहीं पकड़ कर रखती है ना, गहराई तक नहीं जाती है ना, वैसे पेड़ छोटी छोटी आंधियों में भी गिर जाया करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हमारी आपकी जिंदगी का भी है दोस्तों। अगर हम अपनी संस्कृति से ना जुड़े रहें, हमारी जो संस्कृति है वो हमारे जड़ हैं, वो जितनी गहरी होंगे हम उतने ज्यादा फलेंगे फूलेंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे। हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन कलाएं, हमारी प्राचीन धरोहर, हमारे प्राचीन खान पान, यही वो चीजें हैं जो दुनिया में हमें औरों से अलग करती है, एक अलग पहचान हमारी बनती है। दुनिया हमें बड़े ही प्यार भरे नजरों से देखती है, क्योंकि दुनिया में हम कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो औरों के पास नहीं होता। आज हम बात करेंगे आपके साथ ढेर सारी इसी विषय पर कि संस्कृति के संरक्षण में हम युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और बात संस्कृति की संरक्षण की हो रही है। तो जो लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं ना, ये जो प्यारे प्यारे माटी की सौंधी खुशबू लिए ये जो गीत होते हैं ना, आप इन्हें सुनना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति को ही संरक्षित कर रहे हैं। इन्हें समझने की कोशिश हम करते हैं, अपने जड़ को जानने की, इससे और गहरे जुड़ने की। आइए ना शुरुआत करते हैं अरविंद कुमार झा के गाए इस सुंदर से लोकगीत से।

अरविंद कुमार झा के स्वर में आप सुन रहे थे ये लोकगीत। बाबा सुनियो दुपाती में हमर प्रणाम। श्रोताओं, आप युवाओं में एक असीम ऊर्जा होती है, तकनीकी का भी बेहतर ज्ञान होता है आप सबों में। आप युवा संस्कृति के संरक्षण में सबसे बेहतरीन भूमिका निभाने वाले होते हैं। हमारी संस्कृति को वहां तक आप पहुंचाते हैं जहां लोग इसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं। अब आज के जो आप युवा हैं ना, वो तकनीकी कौशल से भी बिल्कुल निपुण हैं, कुशल हैं। हमारे यहां के जो धरोहर हैं, हमारे यहां के जो प्राचीन रहन सहन की विधियां हैं, हमारे पहनावा ओढ़ावा, हमारे त्योहार, ये सब आप युवाओं पर ही निर्भर करता है कि ये कब तक और कैसे बेहतर होते रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो संस्कृति और सभ्यता का उपहार हमें दिया ना, उसे बचाए रखना बिल्कुल हमारे हाथ में है, संरक्षित ही नहीं करना, उसे और भी बेहतर बनाना। अब देखिए ना दोस्तों, अगर बात हम इस उत्तर बिहार के क्षेत्र की करें जहां हमारा ये आकाशवाणी केंद्र है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अन्य क्षेत्रों में आपको नहीं मिलने वाली। जो चीजें यहां होती है, बात खान पान की, पहनावा ओढ़ावे की हो या फिर त्योहारों की हो, हर क्षेत्र का अपना एक अलग पहचान होता है। उसी तरह हमारे इस क्षेत्र में अब देखें ना, हम लोग जूड़ शीतल का ये त्योहार मनाते हैं, अभी हाल में ही हमने मनाया। चौठ, चंद्र, तीज, कई ऐसे त्योहार हैं जो आपको अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता। इन त्योहारों के पीछे कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश होता है जो हमारी जिंदगी को तो बेहतर बनाता ही है, प्रकृति और पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। अब देखे ना, हमारे बिहार का जो महापर्व कहा जाता है वो है छठ पूजा। प्रकृति की

जो आराधना है ना, उसका सबसे सुंदर रूप है ये। उगते सूर्य ही नहीं, अस्त होते सूर्य की भी हम पूजा और आराधना करते हैं प्राकृतिक साधनों से। बिल्कुल, पूजा पाठ में जो सामग्रियां यूज होती है ना, उपयोग जो होती है ना, बिल्कुल प्राकृतिक होती है। बांस के बने हुए दौरे, मिट्टी के बर्तन, फल फूल, इन्हीं चीजों से हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं जो प्रत्यक्ष हमें दिखते हैं। ये भी तो हमारी संस्कृति है ना, जिसे हम संरक्षित कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि इस त्योहार के माध्यम से ही वैसे तालाब जो सालों भर गंदगी से भरे रहते हैं, नदियों के वो किनारे जहां लोग जाना भी पसंद नहीं करते, छठ पूजा के समय ऐसा लगता है मानो स्वर्ग वहीं उतर आया है। यह सब संभव हो पाता है संरक्षण के बदौलत, और यह संरक्षण तब संभव होता है जब युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। एक बड़ी प्यारी मानता है कि भाई हम भले ही किसी पद पे हो, हमारा काम कुछ भी हो, लेकिन छठ त्योहार के समय हम सब अपने कांधे पे कुदाल, खुरपी और वो साफ सफाई के यंत्रों को लेकर बिल्कुल निकल चलते हैं, भक्ति आस्था और एक उत्साह के साथ। यही सब वो चीजें हैं जो संस्कृति को संरक्षित करती है, और इस संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान आप युवाओं का होता है। और भी बातें करते हैं युवा श्रोताओं, चूंकि कार्यक्रम में लोक संगीत भी आप तक पहुंचाना होता है। आइए ना अब आपको सुनवाते हैं अशोक कुमार पासवान का गाया ये प्यारा सा लोकगीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर। श्रोताओं, आज हमारी आपकी चर्चा का विषय है हमारी संस्कृति के संरक्षण में आप युवाओं की भूमिका। अगर सच पूछिए तो संस्कृति को अगर कोई सहज सकता है तो वो आप युवा ही हैं, और आपने परी बेहतर तरीके से इसे संरक्षित किया है। आप युवाओं में तकनीकी ज्ञान भी बेहतर है, तो आप अपनी संस्कृति के संरक्षण में भी इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कई ऐसे डिजिटल माध्यम हैं जहां हम अपने क्षेत्र के वैसे लोक नायकों की कथा, जो आज भी कई लोगों को पता नहीं है, उन तक हम बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। उन लोक नायकों की वीरता, मानवता के प्रति किए गए उनके कार्यों को हम वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक लोगों ने इन्हें अब तक नहीं जाना है। हमारे आपके हर क्षेत्र में ऐसे लोक नायक होते हैं जो देवता के रूप में पूजे जाते हैं। युवा दोस्तों, हमारे यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, अपने यहाँ की सबसे बेहतर चित्रकला की जो कलाएं हैं ना, चित्रकला जो है ना, कहते हैं मिथिला पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। आज दुनिया भर में इसकी एक अलग पहचान है। इसे संरक्षित रखना हम युवाओं के ही हाथ में है। डिजिटल माध्यमों से भी इसे और बेहतर तरीके से हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। कई ऐसे खान पान की चीजें हैं जो अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलता। अब जैसे देखिए, हमारे क्षेत्र में मखाना एक प्रसिद्ध उत्पाद है। इसकी खेती भी बेहतर तरीके से हो रही है, और अब तो वैज्ञानिक तरीके से भी इसकी खेती हो रही है, और दुनिया भर में इसकी पहुंच हो चुकी है। लोगों के बीच में ये वैसे ही लोकप्रिय है क्योंकि इसकी पौष्टिकता बड़ी बेहतरीन होती है। स्वास्थ्य के लिए मखाना बड़ा ही लाभदायक होता है। इसके उत्पादन को और बेहतर बनाने में आप युवा सहयोग दे सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग वगैरह ये सब चीजें जो हमको दुनिया में एक अलग पहचान देती है, इसे और बेहतर तरीके से हम लोगों के बीच ला सकते हैं, वैसे लोगों को सिखा सकते हैं जो इस कला से अनभिज्ञ हैं। मतलब हर चीज आप युवाओं के हाथ में है और इसे आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मगर वैसे युवा जो इन चीजों से दूर हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि देखिए, जब आप कहीं भी जाते हैं ना, किसी भी शहर में, तो सबसे पहले आपसे आपके बारे में परिचय जो पूछा जाता है ना, तो आपसे जरूर ये पूछा जाता है कि भाई आप अपने क्षेत्र की कुछ विशेष चीजों के बारे में बताइए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी युवा दोस्तों, साक्षात्कार वगैरह में आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि आप किस शहर के रहने वाले हैं, उस शहर के कुछ सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में बताएं। तो इन सब चीजों को जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, हम वहां बेहतर तरीके से इन बातों को नहीं बता पाएंगे। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे सांस्कृतिक

सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर है जिन्हें आज संरक्षण की जरूरत है, जिन्हें देखभाल की जरूरत है। अगर हम युवा अपने क्षेत्र के उन सांस्कृतिक धरोहरों को बेहतर करने का ठान ले तो सप्ताह में, महीने में 1-2 दिन हम युवाओं की टोली ये निर्धारित कर ले कि उन धरोहरों को संरक्षित करना है, बेहतर करना है, तो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत हम बना सकते हैं। छोटी छोटी जो कोशिशें होती हैं ना दोस्तों, वही बड़ी सफलता का आधार होती है। जरूरत है बस शुरुआत करने की। जिस दिन हम शुरुआत कर देते हैं ना, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं और फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं। वीरेंद्र कुमार मिश्र का गाया ये प्यारा सा लोकगीत।

हम रहबै अहीं के दुअरिया, शिव मानू ने हमरो अरजिया। वीरेंद्र कुमार मिश्र का गाया ये नजारी आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम।

चंद्रिका कुमारी का गाया ये नचारी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, संस्कृति के संरक्षण की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वो युवाओं की ही होती है, और हम युवा अगर इस मामले में थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाए तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आधुनिक होना ठीक है, पर इतना भी नहीं कि अपनी संस्कृति अपने जड़ों से ही दूर हो जाए। हर देश, हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। वो पहचान, वो खूबसूरती बनी रहनी चाहिए। विविधता में एकता, यही तो हमारे देश का एक सूत्र है जो हमें एक करता है। संस्कृति के संरक्षण में जो जरूरी चीजें हैं वह है कि हमें इसके प्रति लगाव बढ़ाना होगा। मैंने कई बार कहा युवा दोस्तों कि जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते, बेहतर तरीके से जान नहीं पाते, उन चीजों से हम मुंह मोड़ने लगते हैं, उनसे दूरी बनाने लगते हैं। लोक संगीत, आज भी लोक संगीत के क्षेत्र में चाहे बात करियर की हो या धन प्रतिष्ठा की, सब कुछ इस क्षेत्र में भी बेमिसाल है। जरूरत है इन्हें संरक्षित करने की, इन्हें सीखने की, इन्हें समझने की, इन्हें बेहतर तरीके से हमें पेश करने की। हर वो चीज जो प्राचीन कला से जुड़ा हुआ है, हमारे क्षेत्र में कई ऐसी प्राचीन कलाएं हैं, हस्तशिल्प है, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कहीं प्रदर्शनी में, किसी म्यूजियम में तो हम उन चीजों को देख लेते हैं, लेकिन वही हम इसे इतिश्री कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आपके क्षेत्र में कई ऐसी कलाएं हैं, बिल्कुल प्राकृतिक साधनों से बनाई जाती है, पत्तों से बनने वाली वो सीकी कला, कई तरह के कलात्मक बर्तन, चित्रकारी, विभिन्न ऐसी चीजें जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इन्हें सीखने की जरूरत है, इन्हें समझने की हमें जरूरत है। और आप युवा इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, और भी बेहतर करें, हम तो बस यही गुजारिश करेंगे आपसे। कहते हैं करते सब कुछ है हम, बस भूलना नहीं है, उस पर लगातार बने रहना है, उसे और बेहतर करना है। आप जानते हैं बस श्रोताओं कि इस कार्यक्रम में अब आपके साथ हम शाम 5 बजे से 5:40 तक ही रह पाते हैं। घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है, बात संस्कृति के संरक्षण की हो रही है, तो भाई लोक संगीत, लोकगीत, ये भी तो हमारी संस्कृति है। आइए ना आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

अम्बे अहा जगदम्बे कहू दुख कोना के कटबई है। श्रोताओं, तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के आज के अंक का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे। हम आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में जिन लोक गायकों के गाए लोकगीत हमने आपको सुनवाए वे थे दिवाकर सिंह, अरविंद कुमार झा, अशोक कुमार पासवान, वीरेंद्र कुमार मिश्रा और चंद्रिका कुमारी। इस गीत के साथ ही तरुण कुसुम इस कार्यक्रम का यह अंक अब समाप्त होता है। दीजिए अपने इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर को विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं के लिए हमारे कार्यक्रम तरुण कुसुम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज ऑन AIR इस ऐप के माध्यम से आप हमें अपने स्मार्टफोन पर भी सुन पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अब समय हो चला है कुछ गीत और गजलों का। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एनिमल फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

सोनू निगम का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म एनिमल से। गायक कलाकार थे सोनू निगम। आकाशवाणी दरभंगा, जी हाँ, आपने ट्यून किया है और आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। कुछ गीत और गजलें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: चंद गीत और गजलें आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, आकाशवाणी दरभंगा सुनना अब आपके लिए हुआ और भी आसान। अब आप हमें अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं, जहां भी हो आप, आकाशवाणी है आपके साथ। डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR। इस ऐप के डाउनलोड करते ही आकाशवाणी दरभंगा के साथ साथ आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे साथ। अपनी बोली, अपनी भाषा, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन सबका समायोजन, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वालों को याद दिला दे, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। जिन कलाकारों के गाए गजल हमने आपको सुनवाए वे थे भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल। ये आकाशवाणी दरभंगा है, इस समय शाम के 6 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और

0: उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी संध्याकालीन सभा के कार्यक्रम। जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे महाकवि की रचनाएं विद्यापत गीत। शाम 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा गांव घर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ श्रोताओं के लिए आप सुनेंगे अनुभव के चश्मा सा। खेती गृहस्थी किसान भाइयों का ये कार्यक्रम होगा अपने निर्धारित समय शाम 7 बजे से। कुछ प्यार भरे फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर और रात 8:15 ये समय होगा हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का। श्रोताओं आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। और रात 10 बजे आज आप सुनेंगे अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गाने सुनने के लिए हमारा ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9430029353 यानी 9430029353। हेलो आकाशवाणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें आज ही रात 10 बजे से 11 बजे के बीच।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब जानकारी

प्राप्त कीजिए। कल यानी 19 मई 2026 हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। कल की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:49 पर। 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन, और 5:55 ये समय होगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि चर्चा का। स्वास्थ्य चर्चा आप सुनेंगे 6:05 पर। भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम होगा वंदना अपने निर्धारित समय 6:10 पर। रामचरितमानस गाना आप सुनेंगे 6:40 पर। 7:05 ये समय होगा हमारे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला का। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और 10:30 पर कल आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम, बज्जे का कार्यक्रम अंगना। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल यानी 19 मई 2026 को प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

इस समय शाम के 6:10 हुए हैं। समय हो चला है महाकवि की रचनाओं का। सुनिए विद्यापति गीत।

महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे थे विद्यापति के गीत। आज विद्यापति गीतों के कलाकार थे गौतम मिश्र और विदुषी शारदा सिन्हा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में है।

नमस्कार। आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि अछि जे प्रदेश मे औद्योगिक संरचना के विकास भऽ रहल अछि आ आब लोक सभ के रोजगार के लेल बाहर जाय के आवश्यकता नहि अछि। पटनाक गांधी मैदान मे अग्निशमन वाहन आ AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्षक लोकार्पण आ उद्घाटन समारोह के संबोधित करैत श्री चौधरी कहलनि जे प्रदेश मे नव उद्योग सभक लेल वातावरण तैयार भऽ रहल अछि। ओ कहलनि जे राज्य मे मूलभूत सुविधाक व्यवस्था सुनिश्चित कयल जयबाक बाद आब उद्योग सभक स्थापना पर विशेष बल देल गेल अछि आ नव नव औद्योगिक घराना सभ प्रदेश मे निवेशक लेल आबि रहल छथि। मुख्यमंत्री बिहारवासी सभ सँ प्रदेशक समृद्धिक लेल बिहार वापस घुरबाक अपील सेहो कयलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भेटल आवेदन सभक 30 दिनक भीतर निष्पादन कयल जायब अनिवार्य अछि। मुख्यमंत्री अधिकारी सभ के एहि संबंध मे सचेत कयलनि। ओ जनौलनि जे निष्पादित काजक रिपोर्ट समय अवधिक भीतर नहि देबय वला अधिकारी सभक विरूद्ध कार्रवाई कयल जायत। प्रदेश मे आम लोकनिक समस्या सभक त्वरित आ प्रभावी निवारणक लेल काल्हि सँ पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविरक शुरुआत भऽ रहल अछि। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के अंतर्गत एहि पहलक मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा आ प्रशासनिक तंत्र के सोझे जनताक द्वारि धरि पहुंचायब अछि। ई शिविर प्रत्येक मासक पहिल आ तेसर मंगल दिन कऽ राज्यक सभ ग्राम पंचायत में आयोजित कयल जायत। राज्य सरकार काल्हि सँ आयोजित होमय वला सहयोग शिविर के लऽ कऽ दिशा निर्देश जारी कयलक अछि। मंत्रिमंडल सचिवालय विभागक विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा सभ जिलाक प्रभारी मंत्री आ प्रभारी सचिव लोकनि के पत्र लिखि कऽ शिविर के पहिल दिन सहभागिता देबाक अनुरोध कयलनि अछि। प्रभारी मंत्री आ सचिव कम सँ कम 3 प्रखंडक सहयोग शिविर मे उपस्थित रहताह। आकाशवाणी पटनाक प्रादेशिक समाचार एकांश आइ सँ भोजपुरी समाचारक शुरुआत कयलक अछि। भोजपुरी समाचार आकाशवाणीक पटना केन्द्र सहित राज्यक विभिन्न केन्द्र सभ सँ 6:05 सँ प्रसारित कयल जायत। बुलेटिन के प्रारंभ होयबाक अवसर पर वाल्मीकि नगरक सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथिक रूप में उपस्थित छलाह। एकर अतिरिक्त आकाशवाणीक केन्द्राध्यक्ष HDC राम आ उपनिदेशक समाचार अजय कुमार के संग अधिकारीगण आ कर्मचारी लोकनि सेहो उपस्थित रहलाह। राज्यक अधिकतर भाग मे भीषण गर्मीक स्थिति बनल अछि। विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद सहित राज्यक दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य आ दक्षिण पूर्व भाग मे अधिकांश स्थान पर मौसम शुष्क रहत। एहि भाग सभ मे

0: न्यूनतम तापमान मे 2-3 डिग्री सेल्सियस धरिक वृद्धि दर्ज कयल जा सकैत अछि। ओतहि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया सहित राज्यक उत्तर पश्चिम आ उत्तर पूर्व भाग मे कतेको ठाम आइ बरखाक संभावना अछि। केन्द्रीय खनन आ कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आई नरकटियागंज रेलवे स्टेशन सँ दरभंगा जायवाली मेमू सवारी गाड़ी के हरियर झंडी देखा कऽ विदा कयलनि। नरकटियागंज दरभंगा मेमू ट्रेन सेवा शुरू भेला सँ चंपारण आ मिथिलांचलक पैघ आबादी के लाभ भेटत। एहि अवसर पर वाल्मीकि नगरक सांसद सुनील कुमार आ अन्य गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह। अररियाक जिलाधिकारी विनोद दुहन समाहरणालय सभागार मे संभावित बाढ़, पानि आ सुखाड़क स्थिति सँ निबटबाक लेल पूर्व तैयारीक समीक्षा कयलनि। पटना स्थित नियोजन भवन मे काल्हि पूर्वान्ह 11 बजे सँ रोजगार मेलाक आयोजन कयल जायत। राज्य सरकारक युवा रोजगार आ कौशल विकासक तत्वावधान मे आयोजित मेला मे 12वीं पास 18-40 वर्षक अभ्यर्थी भाग लऽ सकैत छथि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण भाइयों के लिए हमारा ये कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत अनुभव के चश्मा सुनिहार सब बूढ़ बुजुर्ग के मीर कुमार झा के नमस्कार अभिनंदन संगे गोर लगे छी उगना भाई।
1: खूब प्रसन्न रहू मिहिर भाई। मिहिर भाई आई सोम दिन है आ आजुक दिन हमरा लोकन सब सप्ताह बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल ल क अबै छियन ई कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सँ। एहि अंतर्गत आइ हिनका लोकनिक लेल ल क आयल छियन एकटा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, एकर संगे गीत नादक आनंद सेहो लेब, मुदा एहि सबसँ पहिने किछु दू टप्पी कऽ लैत छी। एक गोट भेंट वार्ता सेहो सुनब, मुदा पहिने दू टप्पी कऽ लैत छी।
0: देखियौ उगना भाई, अपन सबके सम्माननीय वंदनीय जे छथि अपन सबके पैघ लोकनि जेना माता पिता दादा दादी एहि सब तरहक जतेक लोकनि बूढ़ बुजुर्ग छथि ओ सब लोकनि भारतीय संस्कृत आ सामाजिक मूल्यके मूल आधार मानल जाइत छथि। देखियौ उगना भाई, जाहि घरमे बूढ़ आ बच्चा नहि रहैत अछि ओ घर रमनगर नहि लगैत छैक। उगना भाई, बुजुर्गके बिना परिवारक अस्तित्व अधूरा आ कमजोर बुझा पड़ैत छै। बुजुर्ग लोकनि एक गोट विशाल बट वृक्ष जकाँ रहैत छथि जाहिसँ सब परिवारक लोक हुनक स्नेह आशीर्वाद संग प्रसन्न आ आनंदित सेहो रहैत अछि।
1: ठीके कहलहुँ मिहिर भाई। मिहिर भाई, बुजुर्ग लोकनि जे होइत छथि हुनका लोकनिके किछु नहि अपेक्षा बेसी रहैत छनि, मात्र एतबे अपेक्षा रहैत छनि जे अपन संतान अपन परिवारक सदस्य ओ लोकनि हुनकासँ मान सम्मान शिष्टाचार आ अनुशासनसँ गपशप करैत रहैत। हुनका लोकनि लग किछु क्षण अपन व्यस्ततम जीवनके निकालि कऽ दैनिक रूपसँ देबाक चाही जिनका लोकनिक लगमे बुजुर्ग लोकनि छथिन। जिनका लगमे बुजुर्ग नहि छथिन ओतय अगल बगल समाज जतौ बुजुर्ग लोक छथि सब गोटे के एकहि दृष्टिसँ देखबाक चाही, कारण ओ लोकनि समाजक सम्मानित सदस्य होइत छथि। हिनक अनुभवसँ जखन

0: हमरा लोकनि लाभ उठबै छी विशेष रूप से तखन जखन कि परिवार में कोनो समस्या अबैत अछि। हमरा लोकनि किछु काज करै छी संस्कारक जेना विवाह दान मुरन उपनयन एहि सब बेर मे हिनकहि लोकनि सँ से परामर्श लै छी जे आगू जाकऽ बड़ फलीभूत होइत अछि। तऽ बेर रहत तऽ फेर गपशप करब, मुदा आब हमरा लोकनि सुनै छी भेंट वार्ता तऽ सुनल जाय चश्मा की देखभाल।
1: आई हम पुअर होम दरभंगा लग एकटा चश्मा के व्यवसायी छथि, हिनका लग आयल छी। हिनक नाम छनि विवेकानंद झा। ई बहुतो दिन सँ चश्मा के व्यवसाय कऽ रहल छथि, संगे एहि क्षेत्र के उचित शिक्षा सेहो छनि। तऽ विवेकानंद जी, अहाँ स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनि के ई बुझा कऽ कहियौन जे बुजुर्ग लोकनि आँखि के दृष्टि के सही करबाक लेल चश्मा लगबै छथि, मुदा चश्मा के बनेबा मे कोन गप के ध्यान रखबाक चाही आ चश्मा के कोना सुरक्षित रखबाक चाही, ताहि प्रसंग में अपने वृद्ध लोकनि के किछु जनतब दियौन।
2: नमस्कार। चश्मा के सबसे पहिने चयन जे छै, चयन सही दुकान के होना चाही। चयन के मतलब लेंस के जे बनायल जेतै, चूंकि ककरो बायफोकल रहै छै, क्रिप्टक बायफोकल होइ छै, ककरो प्रोग्रेसिव होइ छै, तऽ एहिमे जे छै से 90% दुकानदार के ई जानकारी नहि छै जे एक्सिस कते पर हेतै। 90 डिग्री केओ 180 डिग्री करै छै, 180 डिग्री के 90 डिग्री, 45 डिग्री अगर लिखल जाइ छै तऽ 45 डिग्री प्योर फिजिक्स के भाषा छै। तऽ सबसे पहिने तऽ ई हुनका सबके तऽ हिसाब से
1: ठीक है कहलहुँ।
2: हाँ, सेलेक्शन जे छै सेलेक्शन होना चाही, जे मानि लिअ जकरा छै नॉलेज ओ बनेतै सही तऽ ठीक छै, अदरवाइज मानि लिअ अहाँके 90 के 180 डिग्री पर बना देलक तऽ ओ चश्मासँ अहाँ साफ नहि देखबै। आ एहिमे जे छै से दिक्कत जे नहि हमरा डॉक्टर चेक केलक या से गलत केलक, ई नहि छै। डॉक्टरके जाँच सही छै, लेकिन अहाँ जे बनेलियै चश्मा, फर्दर अगर हुनका लग वेरिफिकेशनमे अहाँ जाइ छियै तऽ ओ पकड़ा जेतै, आ अदरवाइज जे छै से ओ नहि पकड़ेतै। तऽ ओ अहाँ लेलियै चश्मा, ओ भेग भऽ गेलै, अहाँ पहिरै छियै, चलू सेट कए गेलै ठीक छै, नहि सेट केलकै नहि छै ठीक।
1: चश्मा बनेला के बाद चश्मा के हमरा लोकनि केना आँखि में लगाबी या केना आँखि से निकाली, तकर जे किछ एकटा उचित विधि अछि ताहु प्रसंग पर किछ जनतब दियौ।
2: एहिमे जे छै से निश्चित रूप से चश्मा के केना लगायल जेतै, चश्मा मानि लिअ अहाँ बनेलियै, केओ आदमी फर्स्ट टाइम लगबै छै चश्मा, तऽ फर्स्ट टाइम लगबै छै चश्मा, ओ चश्मा लगा के चलै छै तऽ ओकर कम्प्लेन होइ छै जे हमरा जे छै से ऊपर नीचा देखाइए। तऽ ओ लेंसके जे छै से क्रिप्टक बायफोकल जे होइ छै ओ ऊपर नीचा होइ छै, तऽ ओहि वजहसँ जे छै से सिलेंडर पावर अगर रहतै तऽ ओ जे अगर नीचा ताकतै तऽ ओ नियर विजनसँ देख लै छै डिस्टेंसके, कहैके मतलब छै जे नजदीकीसँ अगर अहाँ दूरी देखबै तऽ दूरी अहाँ क्लियर नहि देखेतै, दूरी फोर दूरी होइ छै, डिस्टेंस डिस्टेंस लेल होइ छै, नजदीक नजदीक लेल होइ छै, लग लग लेल दूर दूर लेल देखतै। तऽ ऊपरसँ दूर देखल जेतै, क्लियर देखेतै, आओर नीचाँसँ नजदीक, नजदीक मतलब जेना अहाँके रीडिंग भेलै, पढ़ाइ लिखाइवला काज भेलै, केओ आदमी काज करै छै सिलाइएके, जेना महिला सब काज करै छै, हुनका लेल ई काज भेलै जे ओ तऽ नजदीकीसँ जखन ओ देखथिन तऽ हुनका साफ देखेतै, आओर दूरीसँ जखन देखेतै। इएह होइ छै प्रोग्रेसिव लेंस जे होइ छै ओ हाई क्वालिटीके लेंस होइ छै, महगा होइ छै, तऽ प्रोग्रेसिवमे ई कम्प्लेन नहि छै, ओहिमे जे छै सेटिंग रहै छै, डिजिटली ओ सेट रहै छै, ओहिमे जेना अहाँ देखबै डिस्टेंस, फार डिस्टेंस कोनो दिक्कत नहि छै, गाड़ियो चलेबै, नीचो तकबै, सीढ़ियोपर चढ़बै दिक्कत नहि छै, आ सीढ़ीपर नॉर्मल चश्मा पहिरकऽ जखन आदमी सीढ़ीपर चढ़ै छै सबसँ बड़का दिक्कत छै सीढ़ीपर, तऽ ओतऽ खसैके डर रहै छै।
1: ठीके कहलहुँ। आ चश्मा जहन लगबै छी तऽ प्रायः बुजुर्ग लोकनिके ई एकटा होइ छनि शिकायत जे हमरा चश्माके किनारवला जे एंगल अइ ओ टूटि जाइए, अथवा निकालै छथि तऽ कखनो ओकरा उचित ठाम पर नहि रखै छथि तऽ तहूसँ चश्मा से खराब भऽ जाइ छनि, तऽ एहि प्रसङ्गमे किछु जनतब दियौ।
2: ओ तऽ लगेला पर छै, मानि लिअ आब अहाँके चश्माके लेंसके क्वालिटी की छै, फ्रेमके क्वालिटी की छै, ओ डिपेंड करै छै क्वालिटी पर, अगर क्वालिटी डुप्लीकेट रहै छै तऽ ओ जे छै से टूटि जेतै।
1: एकर सङ्गे चश्माके जे शीशा होइ छै ओकरो साफ करैके किछु ढंग छै?
2: निश्चित रूपसँ ओकर साफ करैके ढंग छै, जेना अहाँके फाइबरके आइके डेटमे आब ग्लास बंद भऽ गेलै, शीशा वला पहिने चश्मा जे अपना सब पहिरैत रहियै।

0: जवाब नहि आबै छै, ओकरा जगह पर आबि रहल छै फाइबर आबि रहल छै। आ फाइबरमे जे छै से कम्प्लेन छै स्क्रेचके सबसँ ज्यादा। ओहिमे जेना अहाँ बाहरसँ एलियै, केओ आदमी बाहरसँ घुमि घामिके अयलै, तुरंत ओ चश्मा राखलकै, कपड़ासँ पोछि देलकै, तऽ जतेक अहाँके डस्ट पार्टिकल जे छै से ओहिपर चिपकि जेतै तऽ ओ अहाँके ग्लासके खराब कए देतै। तऽ ओकरा ठीक करै लेल जे छै से बहुत सारा विधि छै, जेना ओहिमे एकटा विधि छै जे लेंस क्लीनर आबै छै, जतय अहाँ चश्मा लै छियै ओतय एकटा मिलतै, एकटा शीशीमे या बोतलमे आबै छै लेंस क्लीनर, ओकरासँ जे छै से अहाँ ओकरा साफ कए सकै छी।
1: ओकर लेंस क्लीनर बेसी महग होइ छै कि सस्ता?
0: नहि, सस्ते होइ छै,
1: एकरा सामान्य लोक व्यवहार,
0: हाँ सामान्य लोक व्यवहार करते। और जनरली जे वाश करै लेल जे अपना सब यूज करै छियै गाम घरमे, जेना यूज करै छियै तऽ ओहोसँ साफ हेतै। जेना शैम्पू भेलै, एक रुपैआके सिंपल छै, एकर सबसँ साधारण उपाय बता रहल छी। एक रुपैआके शैम्पू छै, ओ शैम्पू अहाँके मोटा मोटी एक महीना चलि जेतै। ओकरा जे छै से कनि शैम्पूके जे छै पानिमे घोरि दैके छै, अहाँ अपन चश्माके छै दए दियौ ओ पॉटमे,
1: तऽ एहिसँ ओकर शीशा अथवा फाइबरके जे लागल रहैए चश्मामे ग्लास, ओहिपर कोनो दुष्प्रभाव?
0: नहि, कोनो दुष्प्रभाव नहि पड़तै। ओकर सिस्टम छै ठीक करैके ई छै, जेना अहाँ शैम्पूके घुरलियै, जेना कपड़ा साफ करै छियै, तऽ कपड़ा साफ करै छियै तऽ सर्फके पहिने घोरै छियै तऽ ओहिमे दै छियै कपड़ा, तहिना हम की करू कोनो बर्तन जे छै जाहिमे ओ चश्मा जे छै से बढ़िआँ जेना हटि जेतै, ओकरामे जे छै से अहाँ घोरि लिअ शैम्पूके, शैम्पूके दए कऽ तकर बाद ओकरा दू मिनट पाँच मिनट लेल छोड़ि दियौ, दसो मिनट अधिकसँ अधिक। ओकर बाद जे छै डायरेक्ट अहाँ उठाउ, ओकरा वाश कए लिअ, धो लिअ ओकरा।
1: धोइ बेरमे से कोनो सूती कपड़ासँ ओकरा पोछबाक चाही, धोबाक चाही?
0: हाँ, सूती कपड़ासँ, सूती कपड़ा निश्चित रूपसँ ओकरा लेल जे छै से सबसँ बढ़िआँ चीज छै। सूती कपड़ासँ पोछबै तऽ ओहिमे स्क्रेच नहि लागतै। आ धोइके ओकरा सुखा लिअ, ओकर बाद जे छै से कोनो सूती कपड़ासँ अहाँ पोछि लिअ, फेर पहिरियौ।
1: विवेकानन्द झाजी, अहाँ बड़ नीक जकाँ बुजुर्ग लोकनिके चश्माके रख रखाव प्रसङ्गमे जनतब देलियनि। आशा अछि एहि गपपर जो बुजुर्ग लोकनि ध्यान देता तऽ निश्चित रूपसँ चश्मा सुरक्षित रहतनि आ बेर पर देखबामे सहायता भेटतनि। अहाँके एहि लेल।
2: हाँ, अखन अपनासभ चश्माके देखभाल विषयपर गप सुनै छलहुँ। भेंटवार्ताकार छलथि विवेकानन्द झा आ हुनकासँ भेंटकर्ता छलथि शंकर कुमार चौधरी। तऽ की उगना भाई, आब ईसभ सुनलहुँ, कनि रमन चमन हेबाक चाही।
3: हाँ हाँ, बुझि रहल छी, तऽ सुनल जाय ई देवी गीत।
2: सुनल जाय।

0: हाँ, अखन सम्वेत शर्मा भगवती गीत सुनै छलहुँ। उगना भाई, आब बेर भऽ रहल अछि एकटा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद सुनबाक।
1: तऽ सुनल जाय ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं।

0: हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ हाँ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे, आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने कुछ सारे बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहाँ कार्डियक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
1: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
0: बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में कार्डियक सर्जन के साथ।

0: बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
1: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं जो रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट, वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
0: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना, उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
1: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं, वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाएगी,
0: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से, सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800121051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहां आए, देखें, पढ़के समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर, शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
1: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं, अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
0: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी

0: आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमारे युवा साथी उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
1: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
0: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी क्योंकि सवाल आएंगे, मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: मिहिर भाई, अखन हमरा लोकन सुनलो ये प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आ अहिक संग आब आजुक अनुभव के चश्मा से कार्यक्रमक वीर संपन्न भ रहल है, तो हमरा लोकन खेती गृहस्थी में स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के अ दलान पर स्वागत करै छियनि।
4: हाँ देखियो उगना भाई, खेती गृहस्थी कार्यक्रम जे छै से किसान भाई लोकनि के छनि हुनका स्वागत छनि। तऽ किसान भाई जे छथि ने से अपना सब ओहिठाम अन्नदाता कहल जाइ छनि हुनका। भारत के जे छै अर्थव्यवस्था कृषिए पर छै, अपन सबके अधिकांशतः लोग खेती बाड़ी कऽ के अपन जीविकोपार्जन करै छथि। उगना भाई, किसान भाई लोकनि के बुझल छनि जे खेती पथारी में कतेक मेहनत लगैत छै, ओकर बाद मुनाफा कतेक होयत, एकरा सुनिश्चित करे के लेल माटिक जांच जँ कराए कऽ खेती पाथी पथारी करै छथि, तऽ हुनका ओहि फसल मे बेसी उपजा होइ छनि आ लागत सेहो कम लगै छनि।
3: ठीके कहलहुँ, कारण माटि के जांच करा लेला सँ हमरा लोकनि के ई बुझबा मे आबि जाइत अछि जे कोन प्रकारक उर्वरकक आवश्यकता अछि जकरा हमरा लोकनि फसिल के लेल व्यवहार करी। एकर संग संग उर्वरक के मात्रा कतेक हेबाक चाही, कखन उर्वरक देबाक चाही, कारण कोनो उर्वरक खेप में देल जाइत अछि, एक खेप में, दू खेप में, एतौ धरि जे तीन खेप में देल जाइत अछि, जेना नेत्रजन सब होइत अछि, तऽ एहि सब के ज्ञान, एकर अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व के की स्थिति
4: अछि,
3: सब के ज्ञान तक नहीं होते अछि जखन कि माटिक जांच हमरा लोकनि करबै छी।
4: देखियो उगना भाई, निश्चित तौर पर फसल करै से पहिने खेतक माटि जांच करा लेबाक चाही। खेतक माटि में कोन पोषक तत्व के कमी अछि, ओकर पीएच मान जे अम्लीय क्षारीय आ उर्वरक उचित मात्रा जे छै ओकर कोन उर्वरक कतेक देल जाए, ई सब बात के पता तो माटिक जांच करेला के बादे ना चलत। तै दुआरे जँ खेती पथारी करै छी, कोनो फसल करै छी, तऽ ओहिसँ पहिने माटिक जांच करा लेबाक चाही।
3: संग संग मिहिर भाई, माटिक जे जांच करबै छी तऽ ओहि लेल किछु दिशा निर्देश देल गेल अछि कृषि वैज्ञानिक लोकनि द्वारा, जे माटि के जांच लेल कोना हमरा लोकनि एकत्रित करी, कतौ सँ एकत्रित करी, फेर कोना कऽ ओकरा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में

0: उठाबी तऽ एहि लेल ई ध्यान राखी जे हमरा लोकनि माटिके जे लैत छी नमूना खेतसँ, जकरा फेर पॉलिथीनके झोरामे मुँहके बान्हि कऽ ओहिमे एकटा कागजमे अपन नाम पता ईसभ टिप कऽ राखि दैत छियै आ तकर बाद ओकरा माटिके सङ्ग मिट्टी जाँच प्रयोगशालामे पठबैत छी। तऽ एहिमे माटि जे लैत छी खेतसँ तऽ ई ध्यान रहय जे छाहरिवला माटि नहि लेबाक चाही। जै कोलामे छाहरि रहय गाछके, कोनो कोनो खेतमे होइ छै जे आरिपर जो गाछ रहै छै तऽ ओहि गाछके छाहरि ओहि खेतमे रहै छै, तऽ ओ छाहरिवला गाछके तरक माटि नहि लेबाक चाही। दोसर गप इहो ध्यान रखबाक चाही सामान्यतरहे जे जँ खेतक कोला पैघ अछि, छोट नहि अछि, तऽ पैघ कोलामे तीन ठाम चारि ठामसँ माटि लेबाक चाही। ई नहि जे एके ठामसँ लऽ लेलहुँ आ ओकरा रखलहुँ आ ओकरा पठा देलहुँ, से नहि, तीन ठाम चारि ठामसँ लेबाक चाही। एकर सङ्ग सङ्ग हमरा लोकनिके माटि जे लैत छी ओकरा जखन झोरामे रखैत छी तऽ झोरा साफ रहबाक चाही, ओहिमे कोनो दोसर वस्तुक व्यवहार नहि होयबाक चाही। तऽ ईसभ माटिके नमूना लऽ कऽ जे पठाबैत छी ताहि प्रसङ्ग ध्यान रखबाक गप अछि।
1: देखियौ उगना भाई, माटिक जाँच जे छै से प्रत्येक साल नहि हुए तऽ तीन साल पर अवश्य कराबी। जे तीन साल पर जे माटिक जाँच करायब तहन पता चलैत रहै छै जे ओहिमे कोन खादक उपयोग कयल जेतै, ओहिमे कोन कीटाणु विषाणु सब ओहि खेतमे छै तऽ ओहि तरहक दवाइ सबके उपयोग कयल जाइ छै। तैं हेतु माटिक जाँच तीन साल पर फसल बाग करैसँ पहिने कऽ लेबाक चाही, जाहिसँ फसलमे लागतो कम होयत, जे पता चलि जाइ छै जे एहि फसल खेतमे एतबी उर्वरक देबै तऽ बढ़िआँ फसल हेतै। तैं हेतु तीन साल पर माटिक जाँच कऽ कऽ फसल करैसँ पहिने कराब, तकर बाद फसल बाग करबै तऽ ओहि हिसाबसँ जे बीया या उर्वरक देबै तऽ लागतो कम लागत आ उपजो बढ़िआँ होयत।
0: तऽ आब की विचार मेहर भाइ?
1: अच्छा, रमन चमन सुनैके छै, किसान भाइ लोकके सुना देल जाइ छै
0: तऽ सुनल जाए गीत।

0: हाँ उगना भाई, अखन अरविंद कुमार झा ओम प्रकाश सिंह से ई सुंदर सन गीत अपना सब सुनै छलौ,
1: चौमासा छल। आ मिहिर भाई, आप स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के हमरा लोकन मौसम संबंधी जे पूर्वानुमान ओकर जनतब द दे छियन जे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभागक सहयोग सा स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनिक।

0: लेल आगामी 20 मई धरिक लेल देल गेल मौसम संबंधी पूर्वानुमान ई छन जे एहि अवधि के बीच उत्तरी बिहारक कतेको जिला में गरज के संग मेघ के लागल रहबाक संभावना अछि। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि, जखन कि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के लग रहबाक संभावना अछि।
1: देखियो उगना भाई, सापेक्ष आर्द्रता का गप करब तो भोर में 70 से 75 प्रतिशत आ दुपहरिया में 20 से 25 प्रतिशत रहबाक सेहो अनुमान छै। आ प्रमाणित अवधि के दौरान 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वाभासा चले के सेहो संभावना अछि उगना भाई।
0: तो ई छल मौसम संबंधी पूर्वानुमान आ एकर संगे हमरा लोकन स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकन के कृषि संबंधी जे समसामयिक परामर्श ओ ई दे दैत छन जे विगत बरखा से खेत में उचित नमी भऽ गेल अछि। किसान भाई धान के नर्सरी तैयार करवा हेतु नर्सरी में सरल गोबर के खाद के व्यवहार कऽ सकैत छथि। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपनी हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीया खसाबी। नर्सरी में क्यारी के चौड़ाई 1.25 से लकऽ 1.5 मीटर धरि आ लंबाई सुविधा अनुसार रखबाक चाही। बीया के व्यवस्था प्रमाणिक स्रोत से करबाक चाही। आ हमरा लोकन के नर्सरी में 25 मई से ई प्रभेद सब के बीया के हमरा लोकन खसा सके।
1: उगना भाई, किसान भाई लोकन की सलाह देल जाए छन जे प्रमाणित अवधि में वर्षा के संभावना के देखैत किसान भाई सब जे तिमन तरकारी खेत में लगेने छथि ओहि खेत में जलक निकासी के उचित व्यवस्था सेहो कयल जाय। आ देखियो कटाई के समय फसल के सुरक्षित भंडारण जे जेना अखन दलहन दलहन गहूम ई सब जे किसान भाई सब घर में अनने छथि ओकर सुरक्षित भंडारण आप जल्दी से कऽ लेबाक चाही। आ खेत में कार्य करे के दौरान जो देखथिन जे मेघ में कारी कारी मेघ लागल अछि बिजली चमकै छै तो ओहि समय में खेत में काज नहीं करबाक चाही, किया तो बिजली गिरे के संभावना जे छै ओहि समय में बेसी रहै छै। तो एहन सावधानी राखी जे खेत में काज करे दौरान जब मेघ लागल बुझा पड़े बिजली चमकैत बुझा पड़े तो खेत में नहीं रही सुरक्षित स्थान पर आबि जेबाक चाही।
0: खरीफ मकई के बाग के लेल खेत के तैयारी कऽ सकैत छी। खेत के जोताई में 10 से 15 टन गोबर के हमरा लोकन सरल खाद के व्यवहार कऽ सकैत छी। खरीफ मकई के बाग 25 मई से कऽ सकैत छी। हरियर खादक लेल हमरा लोकन सनई आ ढैंचा के सेहो बाग कऽ सकैत छी, जकर एखन उचित बेर अछि।
1: उगना भाई, आद जे छै से कतेक फायदाकारक छै। आब जे कनी दिन जब बाद जे जा रहत तऽ अपना सबके देखै छियै जे कहल जाइ छै जे हे कनी आद दऽ कऽ चाय बनाओ कतेक बढ़िया लगै छै। तऽ ई अदरक बाग करै के समय रोपै के समय आब भऽ गेल अछि। तऽ किसान भाई अदरक के बुआई 15 मई से आब शुरू कऽ लेने छथि, आब जल्दिए एकर खेती कऽ लेबाक चाही। अदरक के आदतन जे छै ओकर जे छै से उत्तर बिहार में ई अनुशंसित अछि जे खेत के जुताई में 25 से 30 टन गोबर के सरल खाद दऽ दै। आ जँ नेत्रजन सुविधा हुए तऽ नेत्रजन 30 से 40 किलोग्राम, स्फुर 50 किलोग्राम, पोटाश 80 से 100 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम आ बोरेक्स जे छै से 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करबाक चाही अदरक के खेती में। देखियो अदरक के लेल बीज जे ओकर छै से 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहै छै, ओते रखबाक चाही। बीज के प्रकंद के आकार जे छै ओकर बीज के अदरक के टुकड़ा जे छै उगना भए से 20 से 30 ग्राम

0: रहबाक चाही आ ओहि कंदमे तीन से चारि टा स्वस्थ कली सेहो आँखि जकरा कहै छियै से रहबाक चाही आ रोपैके दूरी जे छै अदरकके 30 से 20 सेंटीमीटर सेहे रहबाक चाही आ नीक उपजाके लेल जे ओहिमे छै रेडी मिल दवा जे छै से 0.2% घोलसँ उपचारित कऽ कऽ ओ बिआके रोपबाक चाही।
1: ठीक है कहलहुँ। हरदिके सेहो हमरा लोकनि एखन बाउग कऽ सकैत छी। हरदिके अनुशंसित प्रभेद अछि।

0: होबाक चाही।
1: ठीके कहनौ, हरदिके सेहो हमरा लोकनि एखन बाउग कऽ सकैत छी। हरदिके अनुशंसित प्रभेद अछि राजेन्द्र सोनिया, राजेन्द्र सोनाली। ई उत्तर बिहारक लेल अनुशंसित प्रभेद अछि हरदिके। खेतके जोताइमे 25-30 टन गोबरके सरल खाद, नेत्रजन 60-75 किलोग्राम, स्फुर 50-60 किलोग्राम, पोटास 100-120 किलोग्राम आ जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयरके दरसँ व्यवहार कऽ सकैत छी। हरदिके लेल बीया दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राखल जा सकैत अछि। बीयाके प्रकण्डके आकार 30-35 ग्राम होयबाक चाही, जाहिमे 4-5 स्वस्थ कलिका होयबाक चाही। रोपनी बेरमे एकर दूरी 30x20 सेंटीमीटर रखबाक चाही आ एकर गहीर 5x6 सेंटीमीटर कऽ कऽ रोपनी करी। नीक उपजा लेल 2.5 ग्राम डाइथेन M45 के संग हमरा लोकनिके 0.1% कार्बेंडाजिम के प्रति किलोग्राम बीया के दर सँ घोल बना कऽ हमरा लोकनिके आधा घंटा धरि उपचारित कऽ कऽ तकर बाद एकरा बाउग करबाक चाही।
0: देखियौ उगना भाई, ई छल आजुक समसामयिक सुझाव। आब अपना सब किसान भाई के एकटा रमन चमन गीत सुना देल जाय छै,
1: तो सुनल जाए।

0: मिहिर भाई एखन हमरा लोग ब्रजेश कुमार सुमन से गाओल बड़ निक झूमर सुनलौ आ अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थी के बेर संपन्न भ रहल अछि। तसने किसान श्रोता भाई बहिन लोकन से चलबाक आज्ञा लै छियनि।
1: गोर लगै छै उगना भाई,
0: खूब प्रसन्न रहू मिहिर भाई।

खेती गृहस्थी, ये था किसान भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारा अगला प्रसारण पटना केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण, प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत, सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन, प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं
1: और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब एक साल का कार्यकाल एनडीए सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे तो लगभग 5,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारवासियों से बिहार लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की सरकार है।
1: बिहार के लोग जो बाहर में हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए और बिहार, क्योंकि जन्मभूमि, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे।
0: प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी। जन शिकायत संबंधी आवेदन देने की प्रक्रिया शिविर के 30 दिन पहले शुरू करने की व्यवस्था की गई है। वहीं शिविर के दिन भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने कल से आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर शिविर के प्रथम दिन सहभागिता देने का अनुरोध किया है। प्रभारी मंत्री और सचिव कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में

0: उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया। उन्होंने कहा कि निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट समय अवधि के भीतर नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
1: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
0: भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी और एनडीए की रणनीति तथा कोर समिति के विस्तार पर विचार किया गया। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आज से प्रदेश भर में जनजातीय गरिमा उत्सव की शुरुआत हो गई है। जन भागीदारी राष्ट्रव्यापी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 25 मई तक विभिन्न चयनित प्रखंडों में शिविर लगाकर जनजातीय समुदाय के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता जैसी योजनाओं से वंचित परिवारों को चिन्हित कर सहायता दी जाएगी। इस कड़ी में रोहतास जिले के 5 प्रखंडों के 19 गांवों में शिविर की आज से शुरुआत हुई। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने उत्सव का उद्घाटन किया।
3: पहले दिन हम लोग मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और फिर 19 तारीख से 25 तारीख से हम लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे जनजाति बहुल्य गांव में, और हर एक घर में जो भी सरकार की योजनाओं से जो भी वंचित हैं या बैंक अकाउंट उनका नहीं है तो वो सैचुरेशन मोड में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हम लोग का 18 से लेकर 25 तक ये चलेगा। जो जनजाति बहुल्य गांव है उनके हर एक घर में हम लोग के कर्मी जाएंगे और हर प्रकार का जो सरकारी सहायता मिल रहा, सरकारी योजना चल रही, हर योजना का लाभ हर परिवार को मिले, यही हमारा उद्देश्य।
2: सिवान जिले के आंदर प्रखंड के 31 जनजातीय टोलों में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत घर घर जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर, बरियारपुर और धरहरा प्रखंड के 20 चयनित गांवों में विशेष शिविर के माध्यम से पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य जिलों में भी इस उत्सव की शुरुआत हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जनजातीय गरिमा महोत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान से आदिवासियों को काफी लाभ होगा। श्री मांझी ने गया के समाहरणालय सभागार में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समूहों के चयनित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना और वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा प्रदान किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभवाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी गतिरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद देश में सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार हमारे पास मौजूद है।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस LPG के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है। और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड LPG और नेचुरल गैस का, वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशियंट क्रूड इन्वेंट्रीज है। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं।
0: NTPC की बाढ़ इकाई सौर ऊर्जा आधारित नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। NTPC के परियोजना प्रमुख सत्य रामकृष्ण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इसके तहत उपभोक्ताओं को 4 MW तक सोलर एनर्जी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बिजली को बैटरी में संग्रहित किया जाएगा और जरूरत के अनुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से आज शाम 6:05 पर प्रथम भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री कुमार ने आंचलिक भाषा में समाचार प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
2: बहुत दिन से मांग चलत रहा कि भोजपुरी भाषा में बुलेटिन शुरुआत हो, जमुना के शुरुआत आज भइल बा। ऐसे कि जन जन तक ये बात पहुंची आ भोजपुरी बहुत लोग बोलेला, बिहार के साथ साथ विदेश में भी लोग बोलेला। ये जो काम भइल बा ये बड़ा बधाई के पात्र बा। भारत सरकार के हम बधाई देते बानी, बिहार सरकार के बधाई देते बानी। ये आकाशवाणी के जितना भी अधिकारी लोग बा सब लोग के जो सोच बा ओकरा के सैल्यूट कर देने कि इतना अच्छा काम के अच्छा से हम सुननी भी है। जन आज प्रसारण भइल 5 मिनट के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर आकाशवाणी पटना के केंद्राध्यक्ष HD Sidam, उप निदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार, समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक और निधि श्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा यह प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल AIR News_ पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया जा रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तापमान में औसतन 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। श्री मान ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में मत्था टेका और देश प्रदेश में सुख शांति की प्रार्थना की। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। पटना स्थित नियोजन भवन में कल पूर्वाहन 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM ने योग्य अभ्यर्थियों से मेले में शामिल होकर लाभ उठाने की अपील की है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक दर्जन से अधिक छात्राओं की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन पहले भी जिले के एक स्कूल में प्रार्थना

0: सत्र के दौरान 27 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली नई मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण। प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन। प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
7: पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस विशाल समारोह में 30 से अधिक मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जदयू प्रमुख नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भी उपस्थिति देखने को मिली। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों की 40 पंचायतों में ये शिविर आयोजित होंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
8: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
7: जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य तेजी से जारी है। यह अभियान 2 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। जिला

0: अधिकारी ने सभी वरीय नोडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले चार्ज अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कार्य में तत्काल सुधार लाने को कहा गया है। एम्स पटना के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्री एवं मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एम्स जैसे सम्मानजनक संस्थान से पास होकर स्वास्थ्य क्षेत्र में समाज सेवा करना ही सबसे बड़ी करियर ग्रोथ मानी जाती है।
1: एक तो होता है कि अपने प्रोफेशन में बढ़ोतरी करना, करियर ग्रोथ करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली रिसर्च करें आप, एनालिसिस करें आप, बहुत कॉम्पिटेंस पाए, बट एज बिफोर जो इम्पोर्टेंस होती है समाज को वापस देना। नॉलेज, ज्ञान प्राप्त इंसान करता है टू गिव बैक टू सोसाइटी। जहां पर भी आपको वो चांस मिले उसको वापस देने का, उसको उससे मुकरिएगा मत।
0: पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री के द्वितीय चरण का शुभारंभ कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान जिले के सभी अंचल के किसानों के लिए फार्मर आईडी निर्माण की शुरुआत भी की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत यह पहल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बेटा थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दो वांछित अपराधी घायल हो गए, जबकि एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने एक पूर्व हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
2: जब इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि ये एक बड़ी घटना वर्चक में करने जा रहे हैं, इसके लिए ये हथियार यहाँ पर बेटा थाना क्षेत्र के एरिया में रखे हुए हैं। हथियार की रिकवरी के लिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे दोनों के द्वारा अवधेश साहू उर्फ विदेशिया और पप्पू राय, इनके द्वारा फायरिंग किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको रुद्ध किया गया, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, सरेंडर किया है और इन तीनों को अभी वहां पर इलाज करा के फिर आगे कार्रवाई की।
0: जिले में हाल के दिनों में हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का असर जनजीवन और कारोबार पर भी पड़ा है। बिजली बाधित रहने, जल जमाव और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापार प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों में भी मौसम की मार देखने को मिली है। आम और मौसमी सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। इसे देखते हुए उद्यान और कृषि विभाग ने सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सर्वे कर वास्तविक क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है।
3: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
4: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम। इस समय शाम के 7:52 हुए हैं। लीजिए सुनिए कुछ फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नक्स लालपुरी का लिखा ये गीत, अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता के युगल आवाज में। फिल्म का नाम है बेटा।

हमें कौन बांधे, हमें कौन रोके। बेटा, जी हाँ, इस फिल्म में आप सुन रहे थे बाबुल मेहता और अनुराधा पौडवाल को। कुछ प्यार भरे फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म साथी का ये गीत आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का गाया हुआ।

प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, आज ही रात 10 बजे आप सुनेंगे अपने पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फॉन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

सुरेश वाडकर को आप सुन रहे थे। ये फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम।

इस समय रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए, मैथिली में हमारा ये कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार, मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक एहि नव अंकक संग हम नीतू कार्यक्रमक माध्यमे आधा घंटा धरि अहाँ सबसँ गप करब आ अपन विचारक अभिव्यक्ति अहाँ सभक सोझा राखब, किएक तऽ विचारे के आदान प्रदान सँ एक दोसर गोटे एक दोसर के बुझि पबै छी। अपना सब कहै छै ने जे हुनकर जे बजनाइ छनि अत्ते नीक छनि, अत्ते मधुर छनि जे होइत रहते जे सुनिते रही आ हुनका संगे ओ जुड़ाव भऽ जाइत अछि। तऽ किएक तऽ अपन सबके जे मिथिला के जे संस्कृति अइ, परम्परा अइ, ओहिमे बाजब भूकब सँ एक दोसर गोटा के आकलन अपना सब कऽ लै छी। तऽ इएह अछि अपन सबहक व्यवहार। तऽ व्यवहार तऽ अखन ऋतुओ के देखिए रहल छी जे केहन अछि अपना सब संग संग, जे कखनो बुझाइत अछि जे एकदम सँ मेघ लागि दैये आ कखनो एतेहन के रौद भऽ जाइए जे होइत रहैये जे ओहि रौदमे केना कऽ निकलब आ गर्मी से एतेक मोन बेकल भऽ जाइए, औल बौल मोन भऽ जाइए। तऽ एहनमे तऽ कोनो उपाय नहि अछि एकर, सब तरहक ऋतु अनुसारे स्वयंके अपना सबके ढालऽ पड़िते अछि, किएक तऽ परिवर्तन अछि, ई ऋतु चक्र अछि। तऽ परिवर्तन प्रकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया अछि जेकरा स्वीकारब अपन सभक प्रवृत्तिमे सम्मिलित अछि। आ श्रोतागण, कतौ यात्रा पर जेबाक अछि, मोन रहितो लू लगबाक डरे नहि जाइके इच्छा होइत रहैत अछि, ओह भने घरेमे छी, कतौ एहि रौदमे जायब आ गर्मी छुट्टी आबि गेल है, तऽ मोन तऽ होइते जे कतौ कतौ घूमऽ जाय। मौसमके देखिए कऽ अपना सब घरसँ पैर बाहर निकालै छी। तऽ एखन प्राय सब गोटे घरेमे अध्ययन आ अध्यापनमे लागल छी आ प्राय सब बच्चाके गर्मी छुट्टी भऽ गेलनि हँ। तऽ विशेष रूपसँ जे हुनकर अभिभावक छथिन से अपन धियापुताके पढ़ाबैमे लागल छथिन जे कोना हुनकर जे गृह कार्य छनि सेहो सम्पन्न हेतनि। तऽ बाहर रहनिहार सब गाम आबि गेल छथि एहि गर्मी छुट्टीमे आ एहि गर्मी छुट्टीमे तऽ समयक सदुपयोग तऽ सेहो हेबाक चाही ने। तऽ अपना सबके सबसँ बेसी मोन लगैत अछि कोनो नव नव रचनाकारक पोथी लऽ कऽ बैसैमे, पढ़ैमे। आ पोथीसँ पैघ मित्र तऽ कोई अछिए नहि। मैथिली साहित्यक अध्ययन कयलापर, एकर साहित्यक यात्रा कयलापर विद्वत आ विदुषी लोकनिकेँ विषयमे विस्तारपूर्वक जनतब भेटैत अछि। मैथिली साहित्यक जे इतिहास अछि से बड्ड पुरान अछि। कतेको रचनाकारसँ भेला जे अपन लेखनीसँ समाजके दिशा आ दशामे परिवर्तन अनलनि। आजुक जे दिन अछि से बड्ड विशेष अछि, किएक तऽ एहन प्रखर व्यक्तित्वक आ बहुमुखी प्रतिभाके धनी व्यक्तिके मोन पाड़बाक आजुक जे दिन अछि, हुनका मोन पाड़बाक स्मरण करबाक दिन अछि, जिनका नहि रहलासँ मैथिली साहित्यक बड्ड पैघ क्षति भेल।

कवि गीतकार रविन्द्रनाथ ठाकुरक निधन सँ मैथिली साहित्य टुग्गर भ गेल। मैथिली के पहिल सिनेमा ममता गैब गीत रहन। गीतकार रूप में हुनक लिखल गीत भैर नगरी में शोर बौआ मामी तोहर गोर बड्ड प्रसिद्ध भेल। एखनो बड्ड सुनल जाइते छी गीत। रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रबुद्ध साहित्य सम्मान मिथिला रत्न सम्मान मिथिला विभूति सन लगभग 1.5 दर्जन राष्ट्रीय पुरस्कार सँ पुरस्कृत कयल गेल छलन। एतबे नहि, हिंदी सिनेमा आयुर्वेद की अमर कहानी के लेखन आ निर्देशन सेहो ई केने छला। मैथिली उपन्यास श्रीमान गोनू झा के मैथिली साहित्य में विशेष स्थान भेटलन। संगहि नाटक में सेहो एक राति हुनक मैथिली में रहन आ एक मिनट के रानी

आयुर्वेद की अमर कहानी के लेखन आ निर्देशन सेहो ई केने छला। मैथिली उपन्यास श्रीमान गोनू झा के मैथिली साहित्य में विशेष स्थान भेटलन। संगहि नाटक में सेहो एक राति हुनक मैथिली में रहन आ एक मिनट के रानी हिंदी नाटक रहन। मैथिली गजल संग्रह लेखनी एक रंग अनेक के प्रयोग धर्मी रचनाशीलता लेल सदिखन स्मरण कैल जाइत रहलेने छ। त आब कार्यक्रम में गीत नाच दिस चलबाक अछि। एहि परम्परा के निर्वहन सेहो आवश्यक अछि। अपन संस्कृति आ परम्परा में रहल अछि जे कोनो काजक जे आरम्भ करै छी अपना सब, कोनो उत्सव के जे आरम्भ करै छी त भगवतीये के स्मरण कऽ कऽ करै छी। त अपना सब सुनै छी ई भगवती गीत राम विलास यादव के स्वर में, तो सुनिए।

हाँ तऽ श्रोतागण, एखन अपना सब ई मैथिली गीत भगवती गीत सुने छलहुँ हैं, आ माँ भगवती के गीत सुनि कऽ मोन एकदम से भाव भक्ति और बेसी उमड़ि जाइए। तऽ रामविलास यादव के स्वर मे ई भगवती गीत सुने छलहुँ हैं। तऽ जखन अपना सब कार्यक्रम मे अपन भगवती गीत के सम्मिलित करैत छी, तखन कार्यक्रम मे और बेसी जे छै से उत्साह बढ़ि जाइत अछि, किया तऽ माँ भगवती जे छै सभक कल्याण करै छथि। इएह मनोभाव लऽ कऽ अपना सब माँ भगवती के द्वारि पर पहुँचै छियनि। ई नहि छै जे हुनकर आस के ओ बिसरि जाइ छथिन या पूरा नहि करै छथिन, तैं अतेक दूर दूर तक के लोक हुनका लग पहुँचै छनि आ पूरा होइ छनि। मात्र एकेटा अछि जे अपना सब मात्र आस्था राखि कऽ काज करै छी आ आस्था के संग कर्मो करै छी, किएक तऽ मात्र हम सोचब जे हँ भगवती करबे करथिन, हाथ पर हाथ दऽ कऽ बैसल रहब, ओहिसँ तऽ किछु नहि भऽ सकैए। तऽ कर्म करै के लेल सदिखन हमरा सबके प्रेरित करै छथि। आ मैथिली साहित्यक अध्ययन केला पर एकर इतिहास के जेना बुझबाक अछि तऽ ओहि लेल अध्ययन करऽ पड़त। इहो तऽ हमर सबक कर्म अछि, काज अछि। जाबे तक कोनो चीज के लेल हम परिश्रम नहि करब, ता धरि ओहिसँ फल केना प्राप्त होयत। तऽ एकरा इतिहास के बुझबा पर जनतब जखन भेटैत अछि आ जनतब लैत छी, तऽ आधुनिक काल लेबा मे कवि, साहित्यकार आ रचनाकार लोकनि के संग संग जन सामान्य वर्गक योगदान सेहो रहलनि अछि। किछु कवि रचनाकारक रचना मे नव जागरणक संदेश देखबा मे अबैत रहल अछि। समाज में पसरल अंधविश्वास, कुप्रथा, भय, कुंठा, अशिक्षा आ बेरोजगारी के अपन लेखनी के माध्यम सँ एकर निदान लेल सदैत योगदान दैत रहला अछि। कथा हुए, उपन्यास हुए, नाटक हुए, एकांकी हुए आ कि काव्य पाठ, अपन संवेदना के एहि माध्यम सँ व्यक्त कयलनि अछि। मंच पर कोनो नाटक अपना सब देखै छी आ ओहि नाटक के यदि स्वयं के संगे ओकरा मेल करै छी, अनुभव करै छी, तखन तऽ लागैत अछि जे ओ अपने संग बीत रहल है। आ ओ एहन अनुभव होइत अछि जे ओ बड़ी काल तक मौन रहैत अछि, ओकर प्रभाव पड़ैत अछि जीवन में। आ ओहि प्रभाव सँ की होइए तऽ हमसब जीवन में जे किछु काज करै छी, नीक की बेजाय, तऽ ओ बेर बेर होइत रहैए जे हाँ टोकि रहल है, ओ हमरा आगू नहि करबाक चाही या की करबाक चाही, दिशा निर्देश करैत अछि। तऽ मंच पर नाटकक प्रस्तुति के देख मोन मस्तिष्क पर एकर बड्ड गहीर प्रभाव पड़ल अछि। नाटक दृश्य काव्यक अंतर्गत अबैत अछि। काव्यक अंतर्गत सबसँ बेसी स्मरणीय रमणीय नाटक होइत अछि। एखनो जे ग्रामीण परिवेश में रहै छथि, जे अशिक्षित छथि, जे शिक्षित छथि, जे ओ बुझि जाइ छथि, जे पढ़ि कऽ किताब पढ़ि कऽ बुझि जाइ छथिन, मुदा जे अशिक्षित वर्ग छथि ओ तऽ नाटक देख कऽ बहुत किछु सीख जाइ छथि। आ नाटक देखबा लेल पहिने कतेक भीड़ जुटै छल आ लोक सब जाइ छलै आ ओहिसँ बहुत किछु बुझै छलथि। आब तऽ बहुत कम भऽ गेलै एकर, मुदा अखनो अछि जे बहुत ठाम भऽ रहल है। बहुत रास संदेश भेटैत अछि, ओहिसँ ज्ञान भेटैत अछि। मैथिली साहित्यमे नाटकक स्थान सर्वोपरि अछि। प्रत्येक कालक कवि रचनाकार लोकनि समाजक पृष्ठभूमिक आधार रहला अछि। साहित्य संवेदना पर आधारित होइत अछि। अपन भावनाकेँ रचनासँ सभक सोझा अनैत छथि। जेना श्रोता लोकनि अपनो सब एहि काव्य पाठके माध्यमसँ सुनब जे रचनाकार ई कवि की कहऽ चाहि रहल छथि अपन रचनाके माध्यमसँ। तऽ कवि छथि महेंद्र झा, तऽ सुनै छी अपना सब ई काव्य।

0: पाठ।
1: हमर पहिल कविता थी बहुत अछि सपना लेल। ओरिया का राखू पावर दूध, एक कनमा घी, थोड़बो मूँगक दालि सरिया लिय। अपना लेल तो नून आ प्याजक फाँके बहुत अछि, अपना खेपा लेल एही से फाजिल आर की चाही। ओरिया का राखू पावर दूध, एक कनमा घी, थोड़बो मूँगक दालि सरिया लिय। अपना लेल तो नून आ प्याजक फाँके बहुत अछि, जीवन खेपा लेल एही से फाजिल आर की चाही। आर की चाही पैसेंजर ट्रेनक टिकटक दाम, बट खर्चा में थोड़ेक साथ हुआ नून। आ क्षण क्षण पीबा लेल पानी, पानिक स्वाद जो नीक नहीं लागे मीत, पानिक स्वाद जो नीक नहीं लागे मीत, तो पुनः कंठ तर उतार लेब चुटकी भर सातु घोर। पानिक स्वाद जो नीक नहीं लागे मीत, तो पुनः उतार लेब चुटकी भर सातुक घोर। आ पहुँच जाएब अपना देशक कोनो नगर वा महानगर में, आ पहुँच जाएब अपना देशक कोनो नगर वा महानगर में, जतः मजूरी करैत अछि अहाँक आँखि, अहाँक लाठी, माइक ममता आ पुतहुक सहाग। आ पहुँच जाएब अपना देशक कोनो नगर वा महानगर में, जतः मजूरी करैत अछि अहाँक आँखि, अहाँक लाठी, माइक ममता आ पुतहुक सुहाग। तैं फेर कहै छी मीत, ओरिया कऽ राखि लिअ पा भरि दूध, एक कनमा घी, थोड़बो तोरी आ सरिसवक साग। अपना लेल तऽ नून आ प्याजक फाँके बहुत अछि। दोसर कविता अछि नख दर्पण में नित्ता। लाल कका भोरे भोर वक्र तुंड महाकाय, आ कराग्रे बसते लक्ष्मीक मंत्र सँ। लाल कका भोरे भोर वक्र तुंड महाकाय, आ कराग्रे बसते लक्ष्मीक मंत्र सँ। वातावरण के सिक्त करैत देखैत छलाह दुनू हाथक रेखा में, अपन गामक चौहद्दी, खेतक आरि। लाल कका ओहि सँ घेरल अपन चासक उपजाक स्मरणार्थ पसारैत छलाह तरहथी। लाल कका आरि सँ घेरल अपन चासक उपजाक स्मरणार्थ पसारैत छलाह तरहथी। हाथ के निहारैत उठि जाइ छलाह ओछौन सँ लाल कका। नख दर्पण में अपन भूत, अपन भविष्य आ अपन वर्तमानक संग प्रसन्न भऽ उठै छलाह भोरे भोर। लाल कका चौंकी उठै छलाह आंदोलित अधोखी लग ठाढ़ी। लाल कका चौंकी उठै छलाह आंदोलित अधोखी लग ठाढ़ी। पुतहुक मुँह सँ तीर जकाँ बहराइत अवाच्य कथा सँ आहत मोन केँ। लाल कका सम्हारैत हाथ के झाँपि लै छलाह, ओढ़ना तर आ मेटा दै छलाह हाथक रेखा। बिसरि जाइ छलाह वक्रतुंड, बिसरि जाइ छलाह अपन अतीत, अपन भविष्य आ वर्तमानक संग समझौता में जुटि जाइ छलाह बेचारे लाल कका। एकर बाद एकटा गीत सुनबो चाहै छी, सुनल जा। भखरल मन केर उड़ल रंग सन क्षण क्षण जीबे प्राण, अहि बातक पातिल में मूनल आलोकित दिन मान। भखरल मन केर उड़ल रंग सन

अंग शिखर पर लागल किरणक धाही, हिमबानक उत्तुंग शिखर पर लागल किरणक धाही, चिंतन केर कागत पर उखरल लोकक आवाजाही, बिसरल जग सोणित केर तर्पण, बिसरल जग सोणित केर तर्पण।

पुर में मन ममता बरसैये, टक टक तकैत वेदन व्यथा में मन केर मन बदलैये। सिहरल गामक भिजल भोर में मन ममता बरसैये, टक टक तकैत

मुन मारी के कृष्ण सुतल छथि बिसरल जग के कलवल। फूल डाली केर फूल उदासल

अन्तमे एकटा गजल पढ़ चाहब, सुनल जाए। जंजाल सँ झमारल हम बीत बीत लिखब,

नजरी के स्नेह खातिर निहुछल इजोतली खब, नजरी के स्नेह खातिर निहुछल।

उजरल उफाटी में मिली झल फल अनार लिखब। उजरल उफाटी में मिली झल फल

सब आरी सन सिनेही, सब आरी सन सिनेही, बहित बयार लिखब। अंतिम

0: अधिकार से होली खब अधिकार जो दिया दी अधिकार से होली खब।
1: हाँ तो श्रोता लोकन एखन अपना सब एक काव्य पाठ सुने छलों कवि छला महेंद्र झा। तो बहुत बहुत जनतब अपने लोकन के भेटल हैत ए रचना के माध्यम से आ नीक लागल हैत अवश्य नीक लागल हैत कैक तो कवि जखन अपन रचना करे छै तो हृदय को स्पर्श करैत अछि भावना के स्पर्श करैत अछि आ ओतबा काल अपना सब एकदम मौन भऽ जाइ छी ध्यान मग्न भऽ कऽ ओ सुनैत रहै छी आ कियाक तऽ जखन अपना सब कवि के वा कोनो गीते सुनै छी तऽ ओहि रचना के जे रचनाकार छथि कोन भावना से ओहि बेर मे ओहि संवेदना से ओ जुड़ला कोनो गाछ वृक्ष से ओ जुड़े छथि पशु पक्षी से जुड़े छथि तऽ ओकर संवेदना के ओ अपन लेखनी से उतारि दै छथिन तैं ओहि भावना के अपना सब अनुभव करैत रहै छी आ बेसी काल अपना सब ओकरा मोन पाड़ैत रहै छी जे देखियौ न हुनकर लिखलाहा गीत हुनकर कविता जे छै से कतेक मोन के जखन जखन मोन नहि लगैत अछि तऽ ओहि रचना के अपना सब बेर बेर पढ़ै छी आ सुनै छी। तऽ आब कार्यक्रमक जे परम्परा के अनुसार शब्द विमर्श करबाक अछि तऽ एहि शब्द विमर्श मे हम इहो आग्रह करब अहाँ सबसँ जँ कोनो प्रचलित शब्द जँ अहूँ सबके बुझल हुए तऽ पत्रक माध्यमे वा ईमेल के माध्यमे अवश्य सूचित करी जाहिसँ हमरो सबके सहूलियत होयत आ हमरो उत्साह बढ़त जे किछु नव नव जानकारी एतऽ पहुँचत आ शब्द विमर्श करिते छी जे परम्परा के अनुसार अछि। आ एकटा गप इहो कहब जे 8 जून कऽ जे अपन सबके आकाशवाणी अइ ओ 90 बरख पूरा कऽ रहल अछि। ई बहुत पैघ प्रसन्नता के गप अछि किएक तऽ जखन अपना सब कार्यक्रम हमसब करै छी तऽ अहाँ सबसँ जुड़बाक एकटा ई बहुत पैघ माध्यम अछि। हमर सबके संबंध जे छै से मजबूत होइए मधुर संबंध स्थापित होइए। तऽ आब चलै छी शब्द विमर्श दिस किएक तऽ संबंधमे जे छै से बेसी समयके पालन करनाइ सेहो आवश्यक अछि बनायल छी अपना सब समयके सङ्ग। तऽ एकटा शब्द अछि चूह चूही की कहू एहन गर्मी बढ़ि गेलै जे मुँहक रौनक ता जे छै से खत्म भऽ गेलै चूह चूहिए नहि अछि। ओह कतेक मुँह पर अहाँके सौन्दर्य देखै छलहुँ हँ कतेक अहाँके चमकैत रहै छलै मुदा की रहत एहन घामे तरे पसीनासँ रहै छी हम घमायल जे हमर चुहचुहिए खत्म भऽ गेल अछि। एकटा शब्द अबैत अछि खरकट्टल बर्तन जे रखलियै ओहिमे जे पानि जे नहि देलियै से की कहू खरकटि गेल बर्तन आब ओ बर्तन साफे नहि होइए बड्ड बेसी परेशान फिरिसान भऽ गेलहुँ हम ओहिमे। ताहि दुआरे आवश्यकी जे जखन बर्तन राखी तऽ ओहिमे कनि पानि फूलै लए दऽ दियौ जाहिसँ कि हवा आरो जे छै लगतै तऽ खरकटत नहि। तऽ आब एहि शब्द विमर्शक सङ्ग आब अहाँ सबसँ अनुमति चाहै छी किएक तऽ समय सँग बनायल छी। तऽ आब अगला भेंट धरिक लेल नीतूके दिया आज्ञा नमस्कार।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे हमारा ये मैथिली कार्यक्रम। इस समय रात के 8:45 होने ही वाले हैं। अब समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया।

0: केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल, किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ.

0: सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु

0: ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first-ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway's space agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Meanwhile, the Norway-India

0: U.S. industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हममनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किंग हैराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफद से मुज़ाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज़्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के अव्वलीन दौरे के नुमाया नताइज सामने आए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है। ओस्लो में अपने हम मनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ वफद की सतह की बातचीत के बाद आज एक मुश्तरका बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि दोनों लीडरों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को बेहतर करके उसे सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है, जो कि साफ तवानाई, नीलगू मईशत, ग्रीन कायापलट के शोबों में तआवुन को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील है।
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तिजारती और इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे से हासिल होने वाले वसी मौके को भी वाजह किया है। इसमें शराकत दारी को हाईटेक AI स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुतालिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहमत नामा दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने को यकीनी बनाएगा। तआवुन के एक सहरुखी समझौते पर भी आज दस्तखत किए गए। इसमें भारत और नॉर्वे भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए आलम जुनूब के ममालिक को इंसानी तरक्की के हल मुश्तरक तौर पर फराहम करेंगे। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने एक अहम बयान में टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की क़्यादत को तस्लीम किया है। दोनों लीडरों ने ज़ाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम में अपने मुश्तरक एतक़ाद और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अपने अहद का इआदा किया। करीबी ताल्लुकात के तई जज्बा खैर सगाली के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के इज्जत माब शाह हैराल्ड दी फिफ्थ के जरिए रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस अवार्ड दिया गया। जनाब नरेंद्र मोदी

0: बातचीत में बाहमी तजारत को आइंदा 5 साल में दुगना करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली की अपनी हम मनसब मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर कल इटली के 2 रोज़ा दौरे पर रोम पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म मोदी वज़ीर आज़म मेलोनी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग देने की गरज से कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 20 तारीख को इटली के दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा 5 मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की जाम शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म की इटली की वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें समंदरी सिक्योरिटी और मुस्तहकम कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इटली भारत को न सिर्फ यूरोप बल्कि बहिरे रूम के मुकम्मल खित्ते तक भी रसाई फराहम करता है। ये अम्र सप्लाई चेन और दिफाई शराकतदारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका 5 मुल्कों का यह दौरा सफारतकारी से कहीं ज़्यादा हैसियत रखता है। ये भारत के मुस्तकबिल के तवानाई रूट्स, मसनूई जहानत की शराकतदारी, सेमी कंडक्टर की रसाई, दिफाई साजो सामान की तैयारी और आलमी मफादात को बेहतर बनाने से ताल्लुक़ रखता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस बरस $1 खरब और अगले 5 बरस में $2 खरब की मालियत के बरामदात का निशाना तय किया है। उन्होंने वाजे किया कि ये आत्मनिर्भर भारत का हकीकी हॉलमार्क होगा। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव के वेबसाइट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस बरस आलमी चैलेंजों के बावजूद बरामदात $863 अरब तक पहुँच गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 5% ज़्यादा है। जनाब गोयल ने जोर देकर कहा कि आगे पेशरफ्त के लिए इस जोश व खरोश में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हर एक को बिला थकान काम जारी रखना चाहिए।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: अमेरिका के आला सतह के एक सनती वफद ने नई दिल्ली में आज साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत के न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनती शराकतदारी के लिए उभरते हुए मौाक़े पर गौर व खौस किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफैन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत अमरीका तआवुन के साथ वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका फिलवक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानिब गामजन शराकतदारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के 2 मुल्कों के दौरे पर आज सुपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वज़ीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाति बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादती की तहकीकात करने की गरज से 2 तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वज़ीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाति बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बिश्वजीत बसु करेंगे। दूसरे कमीशन ममता बनर्जी की क़्यादत वाली साबिका सरकार के दौरान ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करेगा। इसकी सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज संपत्ति चैटर्जी करेंगी। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दोनों

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 0117171 0112371 0106 और 0112331 4444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि उसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर

0: होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि
1: जी
0: उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है.
1: जी
0: बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगुणकों की ज़रूरत है. तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स
1: जी
0: मतलब संभव नहीं है. लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने
1: जी
0: पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं. तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे. तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है,
1: जी
0: लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते
1: ठीक है.
0: हैं.
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं.
0: जी तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है. प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा. तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा.
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी. जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार. जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार.
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी.
2: सॉरी
1: जी, लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी.
2: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी.
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे.
0: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में. तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है. बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है. सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी. तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे. जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपके इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है. तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं. तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है. ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो. उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या DTH है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है.
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है SE.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में. और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में. और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे. और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे.
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति

0: दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
1: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी
0: जी
1: जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेम्बर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेम्बर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
0: जी और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी
2: जी नमस्कार मैडम जी,
0: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
1: नमस्ते, प्रणाम।
2: जी ना, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
0: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
1: बिल्कुल
0: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी
3: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें
0: जी
1: कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
0: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
1: ये प्रगणक देता है और
0: जी
1: नियम है।

0: कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं, एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है, 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है, उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा वीर ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो हम जनगणना हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है,

0: या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगनक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी कि स्लम और जेजे क्लस्टर, बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं,
1: जी
0: उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे,
1: जी
0: तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-04-81 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनकी उनको अपनी भाषा में समझाना,
1: जी
0: उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है।
1: जी
0: जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे,
1: जी
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती
1: जी
0: है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ
1: जी
0: था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए,
1: जी
0: और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान है, एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा, जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ रुशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर

0: यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गांव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
0: जी
1: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
0: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
2: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
1: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज़ होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
0: और अभी कौन लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
3: सर, जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
1: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
0: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
1: जी
0: तरीके से,
1: जी
0: क्योंकि
1: हाँ
0: अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
1: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
0: जी और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
1: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
0: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया। बहुत
1: धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। रात के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए अपनी ही पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, कि दिन भर की मशक्कत से बदन टूट जाता है। ये ढलती रात, ये बढ़ती गर्मी, ये सूनापन, ये तन्हाई, जिंदगी की ख्वाहिशें, जिंदगी की तमन्नाएं हमें दिन भर थकाती है, दिन भर भगाती है। रात का ये वक्त भले ही सूनापन हो, लेकिन दिल में बातें और यादें चलती रहती है, आंखों के सामने घूमती रहती है। आइए ना फिर रात के इस सुहाने पल को एक बार जीते हैं, अपने उन यादों को फिर ताजा करते हैं अपने इस कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी के आज के इस अंक के साथ। कीजिए ना स्वीकार एक बार फिर अपने इस रेडियो हमसफर संजीव कुमार सुधाकर का प्यार भरा नमस्कार। वही हमारा नंबर है जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद पुरानी फिल्मी गाने। 9430029353 हमें है आपका इंतजार। हमें पता है कि भाई हमारे सुनने वालों को अब इस नंबर को याद करने की कोई जरूरत नहीं, उनके जवान पे ही ये नंबर है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक श्रोता, आइए मिलते हैं उनसे। हेलो आकाशवाणी
1: जी, नमस्कार,
0: स्वागत है आपका जी। अपना नाम बताएं
1: जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: एक ठंडी सी हवा की तरह झोंका आपकी ये आगाज, आपका ये आगमन।
1: जी जी, धन्यवाद आपका,
0: दिल से स्वागत करते हैं भाई। राकेश जी शिमला के हमारे पुराने श्रोता हैं, आप लगातार कार्यक्रम को अपनी मोहब्बत देते हैं, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप
1: जी? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और वक्त जो है 10 बजे का इंतजार कर रहा हूँ तो, और आपका प्रोग्राम सुन रहा था। उससे पहले जो आपने जो आकाशवाणी दिल्ली से जो पब्लिक स्पीक प्रसारित किया था तो उसको भी सुन रहा था, जो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा था, तो शायद आप तक पब्लिक स्पीक के माध्यम से आवाज भी पहुंची होगी शायद।
0: बिल्कुल, हमारे जागरूक श्रोता हैं आप, हर विषय वस्तु के प्रति जागरूकता। और कहते भी है ना कि आकाशवाणी जो है ना, ये सूचना शिक्षा और मनोरंजन को एक साथ आप तक पहुंचाता है।
1: क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी में सिर्फ आकाशवाणी हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन, इसमें जो है हमें ज्ञान और जानकारी मिलती है। देखो जैसे कि अभी मैं पब्लिक स्पीक में जुड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है विषय पे बात करना, की हर विषय पे अगर हम नॉलेज जानकारी प्राप्त करेंगे तो उससे क्या कहीं ना कहीं हम अपने जो आसपास के लोग हैं तो उनको भी हम बता सकते कि हाँ कि भाई ऐसा सा होता है, तो वो पूछते भी रहते हैं कि आपको इतनी जानकारी कहाँ से आप करते रहते हैं। क्योंकि हम जब हम घर के साथ कहते हैं कि हम आकाशवाणी सुनते हैं तो आकाशवाणी के माध्यम से हमें बड़े बड़े जो है विशेषज्ञ से बात करने का अवसर मिल जाता है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। और देखिए ना राकेश जी, विषय वस्तु को आपके पूछे गए प्रश्न के जरिए ही वैसे श्रोता जो किसी वजह से उस कार्यक्रम में अपना कॉल नहीं लगा पाते, उन तक भी वो सूचनाएं पहुंच जाती हैं, उन तक भी वो ज्ञान की बातें पहुंच जाती है। तो बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। आज हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद हमें बताएं
1: जी। एक गाना सुना है

0: से मुस्कुरा, ये रेशम जुल्फे ईश्वरपति आंखें।
1: जरूर सुनवाते हैं आपको, इस उम्मीद में कि आपका ये प्यार, ये अपनापन ऐसे ही इस कार्यक्रम में बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।

0: दो रास्ते फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। राकेश जी की पसंद थी और शिमला से उनका कॉल। ठंडी हवा की झोंका की तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही आया। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा ये जीवंत फोन कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी, हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका जी, अपना नाम बताएं।
1: ज्ञानेश कुमार रंजन सर, मकरमपुर पंचायत मोहन बढ़ियान, जिला मधुबनी बिहार से।
0: मकरमपुर पंचायत जिला मधुबनी बिहार के भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश कुमार जी?
1: जी सर, ज्ञानेश कुमार रंजन।
0: ज्ञानेश रंजन जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? जरूर सुनवाएंगे। ज्ञानेश जी, कब से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप?
1: जी,
0: कब से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं?
1: बहुत दिन से सब सुन रहे हैं, बहुत दिन से मिलकर सुनते हैं, हर बराबर फोन करते हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: आप लोग ठीक है सर? कैसे हैं और सब?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग कैसे होते हैं ये तो पता चलता ही होगा।
1: जी सर जी।
0: तो कैसे लग रहे हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है सर।
0: चलिए
1: सर, बोलो सर, एक मिनट रिक्वेस्ट है आप सर, ये मोबाइल पे कैसे सर सुना जाता है समाचार वगैरह, जैसे पटना से या कार्यक्रम को?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताते हैं। आप इसको डाउनलोड करते हैं, हमारा जो ऐप है ना, न्यूज ऑन AIR, जब आप इसे सर्च करेंगे तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, फिर आपको ये ऑप्शन देगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, ये आपके मोबाइल सेट पे बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा और हमारे सारे कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। हम चाहेंगे
1: एक ही बार से डाउनलोड करना पड़ता है कि बार बार सुनेंगे?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे, वो आपके जो भी स्मार्टफोन है उसकी स्क्रीन पे चला आएगा, उसका जो लोगो बना हुआ है न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप का, तो आप बिल्कुल न्यूज ऑन AIR हमारा ये ऐप है। जब आप सर्च करेंगे आकाशवाणी दरभंगा तो वो सामने चला आएगा। वैसे सारे स्टेशन आए गए हमारे आकाशवाणी दरभंगा के साथ साथ आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न क्षेत्रों के।
1: सिर्फ सर आकाशवाणी दरभंगा अगर सुनना चाहेंगे
0: तो आप जब एक बार उसे फेवरेट में सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके स्क्रीन पे सामने रहेगा। जब आप उसे एक बार सेलेक्ट, जी जी, उसमें एक ऑप्शन रहता है, अगर वो आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाता है ना, तो एक हर्ट का, दिल का आइकन बना रहेगा, उसे आप टच कर लेंगे, वो आपके सामने रहेगा।
1: यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं ना सर?
0: बिल्कुल यूट्यूब पे। और फिलहाल ये प्यारी सी पसंद आ गई है तो हम चाहेंगे बिना देर के हुए आप तक पहुँचाएं आपकी पसंद सेहरा फिल्म से। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत धन्यवाद।

0: गणेश रंजन जी की फरमाइश पर फिल्म सेहरा से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के गाए ये प्यारे से गीत। अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हेलो आकाशवाणी 9430029353 हमारे ये मोबाइल नंबर है, हमें इसी वक्त कॉल कीजिए, हम हैं आपके साथ। और देखिए ना हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए ना मिलते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर भाई। मैं ग्राम पट्टी जिला मधुबनी बिहार से सुधाकर भाई, मैं शिवनारायण महतो बोल रहा हूँ।
0: बिल्कुल,
1: आपको नमस्कार, साथ साथ तमाम श्रोता मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: हमारी ओर से भी नमस्कार। और साथ ही साथ एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि भाई शुभ नारायण जी के आते ही कार्यक्रम और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। हमारे पुराने श्रोता कार्यक्रम के शुरुआती दिनों से जुड़े रहने वाले, अपनी मोहब्बत अपना प्यार लगातार हम तक पहुंचाते रहने वाले, दिल से स्वागत करते हैं। शुभ नारायण जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है सर। आप अपना सुनाइए, बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रहा
0: हम तो इंतजार में होते हैं आप तमाम सुनने वालों के।
1: चलिए, जब सुधाकर भाई का आवाज हम सुन लेते तो हम भी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या सुधाकर भाई का प्रोग्राम हो
0: क्या बात
1: रहा
0: है
1: है
0: भाई, क्या
1: तो
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: खुशी होती है।
0: प्रोग्राम तो आपका होता है, हम तो बस

0: आपका साथ देने आते हैं? क्या बात है। हम चाहेंगे कि भाई शुभ नारायण जी इस कार्यक्रम में, ये शुभता इतनी प्यारी सी बन चुकी है, तो हम चाहेंगे कि कोई अच्छा सा गीत भी हमें बताएं। हम जानते हैं पुराने श्रोता हैं आप।
1: आज मुझे फिल्म बिजली दोस्त का गीत सुना दीजिए, मेरे देश में पवन चली परिवार गीत का बोलेगा।
0: बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से और हम सबों से ये आपकी ये दोस्ती बनी रहे इस जिगरी दोस्ती की तरह।
1: चलिए, हमारा और आपका दोस्ती तो बना ही रहेगा, भगवान करे सदा के लिए बना रहे, जब तक हम और आप रहे, रेडियो रहे, तो बना ही रहेगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।

0: दोस्ती तो बना ही रहेगा भगवान के सदा के लिए बना रहे, जब तक हम और आप रहे रेडियो रहे तो बना ही रहेगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब

0: तो एक अलग तरह का ऊर्जा अपने आप शरीर में बन जाता है। कहते हैं ना, ऊर्जा से भर जाना, जोश से भर जाना। रामपट्टी गौस नगर के भाई शुभ नारायण महतो जी की पसंद पर आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत। अपने पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का हमारा ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर पे 9430029353। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद सर। सुधाकर जी, आपको आकाशवाणी दरभंगा के तमाम पदाधिकारी एवं हेलो आकाशवाणी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम। मैं मोहम्मद जलील अहमद, ग्राम अशराव, पोस्ट नीति चक, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा से बोल रहा हूँ सर।
0: क्या बात है भाई, जितने करीब हैं आपकी बातें भी दिल को एकदम छू जाती है, दिल के करीब होती है। जलील साहब, पुराने श्रोता हैं आप और लगातार इस कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, कैसे हैं?
1: हाँ जी हाँ, रेडियो से तो मेरा संबंध 1968 से है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये हेलो आकाशवाणी जो है जनवरी 2008 से सुन रहा हूँ।
0: मुझे याद है श्रोताओं की बात, रेडियो के साथ इस कार्यक्रम में भी आपने अपने मन की बातों को रखा था।
1: जी हाँ, चौथा संस्करण में।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप लोगों की दुआ से। और आप भी अच्छे हैं, क्योंकि आज प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। अब बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है, बोल रहे हैं, इससे लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं। दुआ और प्रार्थना भी होती रहती है आप लोगों के लिए कि भगवान अल्लाह हरीश्वर तमाम लोगों को खुश रखे।
0: क्या बात,
1: तमाम लोग अच्छे रहे।
0: सच पूछिए तो ये आप तमाम सुनने वालों का प्यार, अपनापन और ये दुआएं, ये मोहब्बत, यही तो है जो हमें बिल्कुल स्वस्थ रखती है। वैसे हम इंसान तो बने ही हैं, कई तरह के परेशानियां तो आती जाती रहती है, लेकिन वो सारी वो सब दूर हो जाती है जब आप सुनने वाले मोहब्बत भरे दिल वाले लोगों से बात होती है। तो हम चाहेंगे कि भाई इतनी प्यारी बात हुई है, एक प्यारी सी पसंद भी हम आपकी जान लें।
1: अनोखी रात फिल्म का एक गाना रफी साहब की आवाज में है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, और इस तरह हमने अपनी जिंदगी बसर कर ली।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जल्दी सर, हम चाहेंगे कि भाई पुराने श्रोता हैं, आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी है, हम चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दे आप इस गीत को।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: थोड़ा सा गुनगुनाएंगे नहीं इस गाने को, आप थोड़ा सा गा दें
1: सर। ये टॉन्स पहले मैं गायक था, प्रोग्राम वगैरह में मैं गाया करता था, किशोर जी का आवाज और रफी साहब की आवाज में।
0: क्या बात है, देखिए
1: खराब हो जाने की वजह से जो है सो अच्छा नहीं है। आपने रिक्वेस्ट किया है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक मिश्रा, मिले न फूल कांटों से दोस्ती कर ली।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अपने जिंदगी बसर कर ली,
2: इसी तरह से बसर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका जली साहब, शुभ रात्रि, नमस्कार।

मेरे देश में क्या बात है भाई, जब बात देश की हो।

0: बस गांव मिल्की चक्के हमारे श्रोता भाई जलील साहब की पसंद पर आप सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म का ये गीत। अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों को आप सुन सकते हैं हमारे साथ, इस वक्त हमें कीजिए कॉल और देखिए ना हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए मिलते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो
0: स्वागत है आपका जी, थोड़ी सी दूरी बना लें रेडियो सेट से अगर आप संभव हो तो, थोड़ी सी दूरी बना लें, आपकी आवाज रिटर्न नहीं आएगी जी। अपना नाम बताएं हमें।
1: मेरा नाम राहुल कुमार राय, ग्राम सुमनगढ़पुर, मधुबनी जिला पंडोल ब्लॉक सरकार मेरा।
0: स्वागत करते हैं हम आपका जी, कब से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप?
1: लेकिन काफी दिन पहले एक बार संजय साहब से बात हुआ था, उसके बाद शशि भूषण साहब से बात हुआ था
0: और आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी बात हो रही है आपसे
1: जी। उसके बाद से जब लगता नहीं डर लाइन जब लगाते जब बिजली बिजली बिजली
0: लेकिन
1: आपसे बात हो रही है, बड़ी खुशी है मुझे आपसे बात हुआ
0: भाई। हमें भी खुशी हो रही है आप प्रयास करते रहे और आपका कॉल आज लगा है, तो हम चाहेंगे कि अपनी पसंद हमें बताएं कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको।
1: नैना मल्ली ने कैसा गाना है आपने सुनाई नहीं तो अपने पसंद का कुछ सुना दीजिए।
0: लैला मजनू फिल्म का कोई गाना जी, आप लाइन पे बने रहिए हम सर्च करते हैं। और कुछ बताइए इस कार्यक्रम को, अभी इस वक्त मधुबनी से सुन रहे हैं आप
1: कार्यक्रम? सर ये कार्यक्रम तो हमारा बहुत फेवरेट कार्यक्रम है, मैं तो बहुत सुनता हूँ। बीच में रेडियो सेट खराब हो गया था, मैं बहुत परेशान हो रहा था, उसके बाद मैं न्यू रेडियो खरीद कर आया और फिर आपका प्रोग्राम सुनने लगा और सुनते अब लाइन तो हम बराबर लगाते रहते थे लेकिन लगता ही नहीं था, आज गंदा से लग गया मैं, मतलब 9:50 से लगाना शुरू किया, लगते लगते अब लगा।
0: देखिए आपके जरिए ये एक संदेश है हमारे उन सुनने वालों तक जो ये कहते हैं कि उनका कॉल नहीं लगता, प्रयास करने से जरूर कॉल लगता है आपका।
1: प्रोग्राम भी बहुत प्यारा लगता है सर आपका सुनने में, ये प्रोग्राम वैसे तो रेडियो का बहुत सारे प्रोग्राम सुनते हैं लेकिन ये प्रोग्राम सबसे फेवरेट हमारा प्रोग्राम।
0: जिस वक्त लैला मजनू फिल्म का गीत तो हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कोई और गीत
1: जी? कोई बात
0: नहीं, लता का गाया एक गीत आपको सुनवाते हैं
1: जी,
0: आरजू फिल्म से।
1: ठीक है सर, थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार भाई, स्वागत करते हैं हम आपका।
1: कादिर बोल रहे हैं, नार मंत्राजा मधुबनी बिहार से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं कादिर भाई?
1: हम तो ठीक है, अपना बताइए।
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए।
1: जी, अब बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है।
0: हमें खुशी।

0: हो रही है कादिर भाई।
1: जी जी
0: और इन दिनों कैसा चल रहा है आपका कारोबार?
1: ठीक है, चल रहा है।
0: चलिए बरकत बनी रहे। कौन सा गाना सुनेंगे इस कार्यक्रम में?
1: आए हमको सुना दिए जुदाई फिल्म का, मार गई बस गई फिर जुदाई, वही गाना है।
0: जरूर
1: सुनाएंगे। मार गई फिर जुदाई बस गई रेतन आई,
0: किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ ये युगल गीत है, हम जरूर सुनवाएंगे। कादिर भाई खाना वाना हो गया?
1: जी जी आपका
0: हमारा तो हो चुका
1: है, 12 बजे खाइएगा, 1 बजे।
0: लेकिन हम तो कुछ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिना खाए रहेंगे।
1: जी जी
0: बड़ी खुशी हो रही है कादिर भाई आपसे बात करके, प्यारी सी पसंद आ गई है, तो हम चाहेंगे बिना देर के हुए कादिर भाई तक ये प्यारा सा गीत जुदाई फिल्म से हम पहुंचाते हैं।
1: जी जी बहुत लगना, मार गई तेरी जुदाई बद गई रिटर्न आई,
0: बिल्कुल सुनवाएंगे। लीजिए ना, रेडी है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर भाई, नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्कार भैया।

0: समय अपनी निश्चित चाल से चलता जा रहा है और बस कुछ ही समय शेष रह गया हमारे पास। आप सुनने वालों का हमें इंतजार है। हम अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर बता दें, 9430029353। हमें है आपका इंतजार। सुनिए अपने पसंद के पुराने फिल्मी गाने। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, ये मिलते हैं उनसे। हेलो, स्वागत है आपका।
1: हेलो, नमस्ते। नमस्कार संदीप सुधाकर भाई, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। नमस्ते नमस्कार भाई, जानी पहचानी सी ये आवाज है।
1: जी जी,
0: हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को भी बताएं।
1: जी, मैं मिथिलेश कामत बोल रहा हूँ, ग्राम भैयापट्टी बासुपट्टी जिला मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ सुधाकर भाई जी।
0: मिथिलेश कामत जी लगातार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाए रहते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछले सोमवार को भी आपका शायद कॉल लगा था।
1: जी जी,
0: तो चलिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा मौका आप अपने जैसे ही उन श्रोताओं को भी दें।
1: जी जी, सोम को बिना। जी जी, ठीक है, एक सप्ताह गैप करेंगे सर।
0: और देखिए, हम लोग
1: सभी श्रोता को मिलना चाहिए मौका सर।
0: ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाएंगे, इसको बुरा मत मानिएगा और कभी तकलीफ में इस बात को मत दिल पे मत लीजिएगा।
1: नहीं नहीं जी जी, नहीं नहीं, सभी को मिलना चाहिए।
0: होता क्या है कि
1: ऐसा होता है ना कि जुड़ना मन कब जुड़ने का मन करता है सर।
0: समझ सकते हैं, ये आपकी मोहब्बत है कि भाई छोड़ना है।
1: बहुत अच्छा लगता है सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: स्टाइल भी बहुत लाजवाब है सर।
0: संतोष भाई भैया पट्टी के, हम तो यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। होता क्या है ना कि हम जब औरों के लिए जीते हैं ना, तो हमें और ज्यादा मजा आता है जिंदगी जीने में, हमारी खुशियां।
1: मैं पेशा से सर डॉक्टरी करता हूं और दवा का दुकान भी है और किसान भी हूं सर,
0: सबसे
1: तीनों काम देखना पड़ता है सर।
0: मुझे जो सबसे बेहतर लगा वो किसान वाली बात जो आपने बोला ना, किसान सबसे बड़ा काम है और सबसे जरूरी काम है। अगर ये अन्न ना हो तो फिर हम सारी व्यवस्था फेल है, अन्न से ही सब कुछ है। इसीलिए कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है, वही शक्ति है, वही ईश्वर है ना?
1: जी जी जी।
0: आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको
1: सर? फिल्म प्रोफेसर का गाना, गाने का बोल है, तो कोई मेरे गांव आएगा आएगा,
0: हमारे गांव कोई आएगा। लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया ये प्यारा सा गीत है, प्यारी पसंद है। हम चाहेंगे संतोष भाई ये मोहब्बत बनी रहे, और अगर आपका कॉल लगता है तो हम जरूर रिसीव करते हैं। लेकिन आप ऐसा भी मत समझिएगा कि आपको कॉल नहीं लगाना, आपको जरूर कॉल लगाना है, लेकिन एक एक एपिसोड को छोड़ दीजिएगा, हमारे एक अंक को छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: नमस्ते नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी। हेलो। स्वागत करते हैं हम दिल से आपका। हम सबों की ओर से, अपनी ओर से भी आपको नमस्कार करते हैं। बिल्कुल, हमारे पुराने श्रोता हैं आप, लगातार कार्यक्रम को अपनी मोहब्बत देते हैं। सुनते आ रहे हैं।
1: सुनने
0: बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं ताहिर भाई?
1: वाले में
0: आज इस कार्यक्रम में देखे ना, ये जैसा कि घड़ी की सुई हमें बता पा रही है कि आप इस कार्यक्रम के आज के
1: से सर आपने
0: आज आज के इस अंक के आखिरी कॉलर हैं, तो हम आपकी पसंद जानना चाहेंगे। जरूर जरूर
1: रफी साहब की आवाज में थी सर,
0: बोल, बता दीजिए
1: वो दुनिया की तरफ वाले। सर
0: बिना देर किए हुए। हम आप इस उम्मीद में कि आपसे फिर हमारी बात होगी और इस कार्यक्रम को ये प्यार अपनापन बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर भाई। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्ते, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: सची कहा कि इबादत या पूजा का तरीका, शब्द, भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन वो पहुंचते हैं उस एक रब तक ही, जिन्हें हम जिस नाम से बुला लें, लेकिन है तो वो एक ही, चाहे उन्हें हम ईश्वर कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें या वाहे गुरु। इस कार्यक्रम में घड़ी की सुई हमें और ज़्यादा देर आपके साथ बने रहने की इजाज़त नहीं दे रही, तो इस उम्मीद में कि वो ईश्वर, वो रब आप सबका भला करे, आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, इसी वादे के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ दीजिए अपने रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर को विदा। नमस्कार। इस समय रात के 10 होने वाले हैं, क्षमा कीजिएगा, रात के 11 होने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष

0: नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।